नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज।

साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई रही हूँ, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10:00 और 10:00 कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00 और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है, तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का धंधो बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पर

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन आते नाम हिरते आवे कागज केरे करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थी जाए तो हमरो बोलो अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाई है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथ मनु में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटो हती जई वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
1: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमी ना कागज माते अपने नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वांतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो चूनू हवार सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी निमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी ना तू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
5: बागर रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपने पूर्ण अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो स्वागत कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो आप सब जानो सो के अमे हमारे टाइम माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने

कुटुंबनो अनस की थाते कार्यक्रम खेतीवाड़ी तक की पड़ा सूटा। आशा करा हो कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक की सभी बातें रही हैं ये आपने गमी होगा। तो आपने हमारो आसुआ कार्यक्रम केवू लाग्यो इने बारा में आप राय सुझाओ अमने आली शको अमारे अणा पता मते। अमारो पतो है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय निहाते तारुदी। राम राम। राम राम।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है।
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थई सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मारू नाम गिल्ली है, ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थकी आवी तो देखी कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो ने पानी पोड़ाव दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूध ज पिएगा, ने अगर आपड़े मुन्नी ने काहे भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
6: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
7: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
6: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
7: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर हो चुके हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होता बचपन।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बचपन केवल किताबों में लिखी बातें सीखने का नाम नहीं है। बचपन तो उस समय और भी खूबसूरत बनता है जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को देखता है, समझता है और उससे जुड़ता है। जिस गांव में बच्चा रहता है वहां की गलियां, खेत, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बाजार, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, आंगनबाड़ी, खेतों में काम करते किसान और कशिश घर के बुजुर्ग, ये सभी उसके लिए सीखने की खुली किताब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे कि अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बच्चों के विकास के लिए क्यों जरूरी है और परिवार व समुदाय इसमें बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज कार्यक्रम में ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होता बचपन को लेकर। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण दौर होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यही वह समय है जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करता है। वह जो देखता है, वह जो सुनता है और जिन लोगों के साथ वह समय बिताता है, उनसे वह बहुत कुछ चीजें सीखता है।
1: जी जी।
0: इसलिए बच्चे का बचपन केवल किताबों और स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे अपने घर, गांव, प्रकृति, समाज और आसपास की दुनिया से भी परिचित होना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, बच्चों की दुनिया उनके घर से शुरू होती है और धीरे धीरे वह अपने घर के बाहर की दुनिया को पहचानना सीखता है। वह जानता है कि उसके गांव का नाम क्या है, उसके आसपास कौन कौन से गांव हैं, खेतों में कौन सी फसलें होती हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं और लोग किस तरह अपना जीवन चलाते हैं।
0: जी जी।
1: जब माता पिता बच्चों को खेत पर ले जाकर बताते हैं कि यह गेहूं है, यह मक्का है और यह सब्जी की फसल है, यह पौधा कैसे बढ़ता है, तो बच्चा केवल नाम नहीं सीखता बल्कि अपने भोजन और प्रकृति के बीच का संबंध भी समझने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह तालाब, कुआं, नदी, छोटे जलधारा के पास जाकर बच्चों को पानी के महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। पेड़ पौधों को पहचानना, पक्षियों की आवाज सुनना, अलग अलग मौसम में प्रकृति में आने वाले बदलाव देखना, ये सभी बच्चे के लिए बहुत स्वाभाविक और रोचक सीख है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही हम देखते हैं कि गांव का वातावरण बच्चों के लिए सीखने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। जैसे कि खेत खलियान, पेड़ पौधे, तालाब, नदी, पशु पक्षी, कच्ची पक्की गलियां, स्थानीय बाजार और गांव के लोग, ये सभी बच्चों के लिए किसी खुली किताब की तरह ही होते हैं। साथियों, बच्चा जब अपने माता पिता या दादा दादी के साथ खेत में जाता है तो वह केवल घूमता नहीं है बल्कि खेती, मेहनत और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ चीजों को जानता है।
1: बिल्कुल।
0: उसे समझ आ जाता है कि हमारे भोजन में आने वाला अनाज किसान की मेहनत से ही पैदा होता है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे गाँव के बुजुर्ग अनुभव का खजाना होते हैं। उनके पास गाँव के पुराने समय की अनेक कहानियाँ, परम्पराएं और स्थानीय ज्ञान होते हैं। बच्चे जब दादा दादी या नाना नानी से बात करते हैं और उनसे

0: पूछते हैं कि पहले गांव कैसा था, लोग खेती कैसे करते थे, पुराने समय में पानी कैसे बचाया जाता था या त्योहार किस तरह मनाए जाते थे, तो उन्हें अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। बुजुर्ग बच्चों को स्थानीय लोक कथाएं, कहावतें, पहेलियां और पारंपरिक खेल भी बता सकते हैं। इससे बच्चों का अपने परिवार और समुदाय से जुड़ाव भी मजबूत हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, अगर यही बात करें कि बचपन का प्रकृति से जुड़ाव काफी जरूरी है। श्रोता साथियों, गांव के पारंपरिक खेल भी बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, रस्सी कूदना, पतंग उड़ाना, ये जो ऐसे खेल होते हैं अंजलि जी, वो बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ साथ उन्हें मिलजुल कर रहना भी सिखाते हैं। साथ ही वे बच्चों को हार जीत कैसे स्वीकार की जाती है ये भी सिखाते हैं। खेल के मैदान में बच्चों के बीच दोस्ती और सहयोग की भावना भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके घर तक भोजन कैसे पहुंचता है, किसान खेत में मेहनत करता है, पशुपालक पशुओं की देखभाल करता है, कारीगर अपनी कला से वस्तुएं बनाता है और अलग अलग काम करने वाले लोग मिलकर गांव को आगे बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे यदि इन कामों को करीब से देखते हैं तो उनके मन में श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता है, उन्हें समझ आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर
1: हाँ।
0: काम समाज के लिए उपयोगी है। माता पिता बच्चों को गांव के अलग अलग काम करने वाले लोगों से परिचित करा सकते हैं और उनके काम के बारे में सरल भाषा में उन्हें बता भी सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बच्चों के विकास के लिए क्यों जरूरी है, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो कशिश, आज बच्चे मोबाइल और टीवी की दुनिया में काफी समय बिताते हैं। ऐसे में उन्हें अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। बच्चों के साथ सुबह या शाम थोड़ी देर गांव में घूमना, पेड़ों को पहचानना, पक्षियों को देखना, मौसम के बदलाव पर बात करना या घर में छोटा सा पौधा लगाना उनके लिए सीखने का अच्छा माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे से पूछा जा सकता है कि आज तुम्हें कौन सा पक्षी दिखाई दिया, इस पेड़ पर कौन से फल लगते हैं, बारिश के बाद खेतों में क्या बदलाव आया। ऐसे छोटे छोटे सवाल कशिश बच्चों में देखने, सोचने, सवाल पूछने की आदत विकसित करते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपने गांव से परिचित होने का अर्थ केवल वहां की जगहों को पहचानना नहीं है, बच्चों को यह समझाना भी चाहिए कि गांव को साफ और सुंदर रखना उनकी भी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: कूड़ा इधर उधर न फेंकना, पानी बर्बाद न करना, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना, ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती है। जब बच्चे अपने आसपास की समस्याओं को पहचानते हैं तो उनमें समाधान के बारे में सोचने की क्षमता भी विकसित हो पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो परिवार और विद्यालय में बच्चों की राय को महत्व देना भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे अपनी बात खुलकर रखते हैं, छोटे छोटे निर्णयों में भाग लेते हैं तो उनमें आत्मविश्वास के साथ साथ जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि किसान, सफाई कर्मी, अन्य जो कामगार समाज के लोग होते हैं वो गांव के विकास में अहम योगदान देते हैं।
0: जी जी,
1: किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये भावना अंजलि जी बचपन से ही बच्चों में आनी चाहिए। गांव में बच्चों को ये भी सीख मिलनी चाहिए कि खेल, शिक्षा, घूमने फिरने और नई चीजें सीखने के अवसर लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से मिले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे समानता और आपसी सम्मान की भावना भी मजबूत होती है अंजलि जी।
0: जी हाँ कशिश, जब बच्चा अपने गांव, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोगों और अपनी प्रकृति को जानता है तो उसके भीतर अपनेपन की भावना विकसित होती है। उसे महसूस होता है कि वह केवल एक परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े समुदाय का भी हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: यही भावना आगे चलकर उसे दूसरों के प्रति सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी का भाव सिखाती है। बच्चे को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना उसके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को भी मजबूत करता है। इसलिए श्रोता साथियों, बचपन में जो चीजें बच्चे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, वे उनके मन में लंबे समय तक बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को हर समय केवल यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या सीखना है, कभी कभी उसे अपने आसपास की दुनिया देखने, सवाल करने और खुद समझने का अवसर देना भी जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: हमारा गांव बच्चों के लिए केवल रहने की जगह नहीं है कशिश, यहाँ खेत हैं जो मेहनत की कहानी बताते हैं, पेड़ हैं जो प्रकृति का महत्व समझाते हैं, तालाब और कुएं पानी की कीमत बताते हैं, बुजुर्ग अनुभव से परिचित कराते हैं और अलग अलग काम करने वाले लोग मेहनत और सहयोग का अर्थ समझाते हैं। इसलिए हम बच्चों को अपने गाँव से जोड़े, उनके साथ थोड़ी देर खेत तक जाएं, किसी बुजुर्ग से बातचीत करवाएं, पेड़ पौधों की पहचान करवाएं, स्थानीय खेल खिलाएं, उन्हें अपने आसपास की चीजों पर सवाल पूछने दें, क्योंकि जो बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझता है वह धीरे धीरे अपने समाज को समझना भी सीखता है और यही समझ उसके बचपन को केवल यादों से नहीं बल्कि अनुभव और सीख से भी समृद्ध बनाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि श्रोता साथियों, अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बचपन का वास्तव में सीखने और समझने की एक सुंदर यात्रा है।
0: बिल्कुल,
1: गांव बच्चों को न सिर्फ प्रकृति, मेहनत, संस्कृति, रिश्तों और सामुदायिक जीवन का पाठ पढ़ाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है अंजलि जी कि हम बच्चों को समय दें, उनकी जिज्ञासाओं को समझे और उन्हें वास्तविक दुनिया से जुड़ने के अवसर प्रदान करें।
0: बिल्कुल,
1: आइए श्रोता साथियों, हम सभी मिलकर हमारे बच्चों को ऐसा सच्चा बचपन दे जिसमें किताबों के साथ खेती की सीख भी हो,
0: बिल्कुल
1: मोबाइल की दुनिया के साथ मिट्टी की खुशबू भी हो और आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव भी हो, और यही बचपन आगे चलकर अंजलि जी एक मजबूत, संवेदनशील और जागरूक समाज की नींव बनेगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व न करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवा साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो छोटी सी लगती है, लेकिन अगर हम सब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो इसका असर हमारे घर से लेकर हमारे पूरे समाज और पर्यावरण तक दिखाई दे सकता है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम रोज न जाने कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, कांच की शीशियां, पुराने कपड़े, डिब्बे, कागज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत सारा।
0: जी जी,
1: इस्तेमाल के बाद अक्सर हमारा पहला विचार होता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हर ऐसी चीज वास्तव में बेकार हो चुकी होती है? शायद नहीं। कभी कभी किसी वस्तु का हमारे लिए उपयोग खत्म होता है, लेकिन उसका जीवन वहीं खत्म नहीं होता। उसे किसी दूसरे काम में लिया जा सकता है और किसी और व्यक्ति को दिया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: उसकी मरम्मत की जा सकती है और उसे नए रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है श्रोता साथियों, फेंकने से पहले हमें सोचना होगा। तो आज का हमारा विषय है फेंकने से पहले सोचे चीजों को दोबारा उपयोग करने की संस्कृति।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि विषय आज का काफी महत्वपूर्ण है और हम बात कर रहे हैं कि ऐसी आदत की जो देखने में तो काफी छोटी लगती है लेकिन अगर अपना ली जाए तो ये हमारा जीवन बदल सकती है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, हम बात कर रहे हैं कि फेंकने से पहले हमें सोचना है और चीजों को वापस उपयोग में लाना है। आपको बताना चाहेंगे युवा साथियों कि हमारे लिए चीजों को फेंकना तो आसान होता है लेकिन दोबारा उपयोग करना एक समझदारी भरा कार्य भी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि आज की तेज जिंदगी में चीजों को खरीदना और बदलना पहले से काफी आसान हो चुका है। कोई सामान पुराना हुआ, उसमें छोटी सी खराबी आई या उसका नया मॉडल बाजार में आ गया तो हम कई बार पुराने सामान को किनारे कर देते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हर पुरानी चीज कचरा नहीं होती साथियों। मान लीजिए कि घर में कोई पुराना कांच का जार है, उसमें अचार मसाले या कोई खाद्य सामग्री रखी जा सकती है। पुराने कपड़ों से थैले पोछे या दूसरे उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं। पुराने डिब्बों को सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही पुरानी किताबें किसी छोटे बच्चे के काम आ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज पुरानी हो गई है या नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या इसका कोई दूसरा उपयोग हो सकता है। और यही सवाल हमारी सोच में बदलाव लाएगा। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को दोबारा उपयोग करते हैं तो उसका फायदा केवल हमारी जेब को नहीं होता। किसी नई वस्तु को बचाने के लिए कच्चे माल, पानी, ऊर्जा, मशीनों और परिवहन की भी जरूरत होती है।
0: जी जी।
1: अगर हम पहले से मौजूद वस्तु का उपयोग लंबे समय तक कर लेते हैं तो नई वस्तु खरीदने की जरूरत कुछ हद तक हमें कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, आपको बताए तो अगर कोई कपड़ा थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन अभी उपयोग में लाया जा सकता है तो उसे तुरंत फेंकने के बजाय हम उसका दूसरा उपयोग सोच सकते हैं। इसी तरह घर में रखे पुराने फर्नीचर को देखकर तुरंत नया खरीदने के बजाय उसकी मरम्मत या नया रूप देने के बारे में भी सोचा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यही सोच हम इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली आदत से निकाल कर इस्तेमाल करो, संभालो और दोबारा उपयोग करो की ओर ले जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, और इन सभी कार्यों में हमारे युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा क्यों युवा साथियों, तो किसी भी बदलाव को समाज में आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। युवा साथी जागृति जी केवल नई चीजें अपनाने वाली पीढ़ी नहीं है बल्कि नई सोच को समाज तक पहुंचाने वाली पीढ़ी भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करता ही है, कॉलेज और स्कूल में अलग अलग गतिविधियों से भी वे जुड़ते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ विचार साझा करते हैं। इसलिए अगर युवा रीयूज यानी कि पुनः उपयोग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो ये सोच तेजी से दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में युवा अपने घर से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है उसे तुरंत फेंकेंगे नहीं, पहले सोचेंगे कि इसका दोबारा उपयोग कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ये एक ऐसा छोटा सा नियम है लेकिन इसकी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि फेंकने से पहले हमें चीजों के बारे में सोचना होगा तो ये बातें निरंतर बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि चीजों को फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए। गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, यही जानते हैं कि खरीदने से पहले भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोबारा उपयोग की संस्कृति केवल पुरानी चीजों को फिर से इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है श्रोताओं, इसकी शुरुआत खरीदारी से पहले भी होती है। हम देखते हैं कशिश कि किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं हम, तो खुद से पहले हमें पूछना है कि क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है, क्या मेरे पास पहले से ऐसी कोई चीज मौजूद है, क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसकी मरम्मत संभव है, क्या इसे बाद में किसी दूसरे काम में उपयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम किसी वस्तु को इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो नई है, आकर्षक है या बाजार में ट्रेंड कर रही है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि जो नया है वही हमारे लिए जरूरी भी हो। समझदारी सिर्फ अच्छी चीज खरीदने में नहीं श्रोताओं, बल्कि जरूरत के अनुसार चीजें खरीदने में भी है।
1: बिल्कुल, साथ ही अगर बात करें पुराने कपड़ों को नई जिंदगी देने की, तो हमारे घरों में कपड़े ऐसी चीजों में शामिल होते हैं जिन्हें थोड़ा समय बाद हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी कपड़ा छोटा हो जाता है, कभी उसका रंग पुराने लगने लगता है, तो कभी वह हमारी पसंद का नहीं रहता युवा साथियों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह कपड़ा पूरी तरह बेकार हो गया है, उसे आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं अगर वह पहनने योग्य हो। पुराने कपड़े घर में दूसरे उपयोग में भी लाए जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई की थोड़ी रचनात्मकता से उन्हें नए उपयोगी रूप में बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: युवा इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी जोड़ सकते हैं। पुरानी चीज को नया रूप देना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा विचार नहीं है जागृति जी, बल्कि रचनात्मकता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई घरों में पुरानी चीजें रहती है तो हम उसका इस्तेमाल श्रोता साथियों किसी भी चीज में कर सकते हैं। जैसे कि आपने कपड़ों के बारे में बताया, क्रिएटिविटी से भी हम उन कपड़ों को जोड़ सकते हैं। वही अगर किताबों के बारे में बताया, तो कई घरों में पुरानी किताबें अलमारी में रखी रहती है, हम देखते हैं वर्षों तक उनका इस्तेमाल नहीं होता। अगर किताबें अच्छी स्थिति में है श्रोता साथियों, तो हमारे लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई है।
1: जी हाँ।
0: तो उसे किसी दूसरे विद्यार्थी तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह मरम्मत की आदत को भी अपनाना होगा, क्योंकि आज कई बार छोटी खराबी होने पर हम वस्तुओं को बदलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों की जीवन शैली में मरम्मत की संस्कृति बहुत मजबूत थी।
1: बिल्कुल,
0: कपड़े फटते थे तो हम सिल देते थे, जूते खराब हो जाते थे तो हम ठीक करवा लेते थे, फर्नीचर की मरम्मत होती थी, घर की कई चीजों को लंबे समय तक संभाल कर इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो पुरानी वस्तु को हमेशा संभाल कर रखना जरूरी है, बल्कि विचार ये है कि मरम्मत संभव हो तो उसे एक विकल्प के रूप में हम जरूर जोड़ सकते हैं। आज युवाओं के लिए यही सोच एक नई तरह की जिम्मेदारी बन सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, दोस्तों कभी कभी किसी वस्तु की कीमत उसके पुराने रूप में नहीं बल्कि उसके नए उपयोग में छिपी हुई होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि पुरानी बोतल पौधे लगाने के काम आ सकती है, पुराना डिब्बा छोटी चीजें रखने के काम आ सकता है जागृति जी, वही जो पुराने कागज होते हैं उनका उपयोग हम ड्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। पुरानी लकड़ी से छोटी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि रीयूज केवल बचत नहीं एक तरह की क्रिएटिव सोच भी है। युवा चाहें तो स्कूल कॉलेज या सामुदायिक स्तर पर पुरानी चीजों से नई उपयोगी चीज जैसी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इससे बच्चों और युवाओं में ये समझ विकसित होगी कि हर वस्तु का मूल्य केवल उसके बाजार भाव से तय नहीं होता।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि कल्पना कीजिए श्रोताओं कि किसी घर में ऐसी किताबें हैं जिनकी अब जरूरत ही नहीं है, और दूसरे घर में किसी बच्चे को उन्हीं किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दोनों परिवारों के बीच चीजों का आदान प्रदान हो जाए तो एक वस्तु दोबारा उपयोग में आ सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसी तरह श्रोता साथियों हम कहना चाहेंगे आपसे कि कचरा केवल हमारे घर के बाहर दिखाई देने वाली समस्या नहीं है। जब बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं कम समय में इस्तेमाल होकर फेंक दी जाती है तो उन्हें संभालने और निपटाने की जरूरत भी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अगर हम वस्तुओं की उपयोग अवधि बढ़ाते हैं, उन्हें साझा करते हैं, मरम्मत करते हैं या दोबारा उपयोग करते हैं, तो हम कचरे को कम करने की दिशा में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आज के कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा काम आप जरूर कीजिएगा। अपने घर में ऐसी 5 चीजें खोजिए जिन्हें आप फेंकने वाले थे। अब हर चीज को देखकर खुद से आप पूछिए कि क्या इसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है, अगर हाँ तो उसका दूसरा उपयोग खोजिए। अगर आपके काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकती है तो उसे जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए। अगर मरम्मत हो सकती है तो उसकी आप मरम्मत करवाइए, और अगर वो वास्तव में उपयोग योग्य नहीं है तो उसे उचित तरीके से अलग करके निपटाने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: यही छोटा सा अभ्यास हमारी आदतों में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथियों से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों विकास का मतलब केवल ज्यादा चीजें खरीदना नहीं होता, विकास का मतलब ये भी है कि हम उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना कैसे सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि हम पुराना मतलब बेकार वाली सोच को थोड़ा बदलें। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज को फेंकने से पहले एक बार सोचना जरूर जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि किसी वस्तु की हमारी जिंदगी में भूमिका खत्म हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग वहीं खत्म हो ये भी जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ।
1: तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई ऐसी पुरानी चीज आए और आपका मन कहे कि इसे फेंक दें, तो बस एक पल रुकेगा और खुद से पूछेगा कि क्या इसे एक और मौका दिया जा सकता है। शायद आपका यही एक सवाल किसी चीज को कचरे में जाने से रोक दे।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए युवा साथियों, कम खरीदे, लंबे समय तक इस्तेमाल करें, जरूरत हो तो साझा करें और फेंकने से पहले दोबारा उपयोग के बारे में जरूर सोचें।
0: जी हाँ,
1: इसी छोटी सोच से बन सकती है एक जिम्मेदार जीवन शैली और एक अधिक जागरूक समाज जागृति। जी
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, श्रोता साथियों, कि आप सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते रहिए।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

व्रत के निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पशु पक्षियों की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, हम देखते हैं कि प्रकृति केवल पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ों का नाम नहीं है। प्रकृति में दिखाई देने वाला हर जीव, चाहे वो जंगल में रहने वाला बड़ा पशु हो, खेतों में घूमने वाली चिड़िया हो, या हमारे आसपास दिखाई देने वाला छोटा सा कीट, प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह जब किसी गांव में पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है श्रोताओं, खेतों में गाय बैल दिखाई देते हैं, पेड़ों पर गिलहरियां दौड़ती है और आसमान में पक्षियों के झुंड उड़ते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारा पर्यावरण जीवंत है। लेकिन जब जंगल कम होते हैं, जल स्रोत सूखते हैं, पेड़ों की संख्या घटती है और प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका असर केवल इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इसलिए आज का हम कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं कि पशु पक्षी की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा का क्या महत्व है और इसे हमें अपनी जिम्मेदारी कैसे समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं पशु पक्षियों की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा को लेकर, तो हमने आपको बताया था साथियों कि पेड़ों की संख्या घटती है और प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका असर केवल इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए अंजलि, पशु पक्षियों की रक्षा करना वास्तव में प्रकृति की रक्षा करना है और प्रकृति की रक्षा करना हमारे भविष्य की सुरक्षा करना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि प्रकृति में हर जीव की अपनी अलग भूमिका होती है।
0: बिल्कुल,
1: पक्षी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। कई पक्षी और कीट फसलों में परागण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। कुछ जीव ऐसे कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में पशुओं का महत्व तो सदियों से रहा है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ और पशु ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। पशुधन किसानों की आजीविका का आधार बन सकता है, इसलिए पशु संरक्षण केवल दया का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संतुलन से भी जुड़ा विषय है।
0: जी अंजलि, क्योंकि वन्य जीवों का सबसे बड़ा घर जंगल है। जंगल भोजन, पानी और सुरक्षित रहने की जगह देते हैं। जब जंगलों का क्षेत्र कम होता है श्रोताओं, या प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, तो वन्य जीव के सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जंगल बचेंगे तो वन्य जीव बचेंगे और वन्य जीव बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन मजबूत होगा। हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है। जंगल वर्षा चक्र, मिट्टी, जल स्रोत और जैव विविधता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी कि पक्षियों के लिए हमारा छोटा सा प्रयास क्या हो सकता है, तो श्रोता साथियों, गर्मियों में पक्षियों के लिए छत या आंगन में पानी का पात्र रखना एक छोटा लेकिन सबसे उपयोगी प्रयास हो सकता है। आसपास के ऐसे पेड़ पौधे लगाना जिनसे पक्षियों को आश्रय और भोजन मिल सके, उनके लिए मददगार हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, पानी का पात्र रखते समय उसकी नियमित सफाई भी जरूरी है। स्वच्छ पानी और सुरक्षित स्थान पक्षियों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। गांव में हम देखते हैं जागृति जी कि पुराने जो पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें तो उसके लिए अनेक छोटे पक्षियों और जीवों को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बिना आवश्यकता पेड़ों की कटाई रोकना भी पशु पक्षी संरक्षण का हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किसान और प्रकृति का संबंध भी बहुत गहरा है, ये हम जानते हैं। खेत में केवल फसल नहीं होती बल्कि वहाँ अनेक जीवों का संसार भी होता है। मिट्टी में रहने वाले जीव, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, पक्षी और अन्य छोटे जीव कृषि पारिस्थितिकी का हिस्सा होते हैं। कृषि में प्रकृति के अनुकूल तरीके को बढ़ावा देने से मिट्टी, पानी और जैव विविधता की रक्षा में सहायता मिल सकती है। खेत के आसपास पेड़ पौधों और प्राकृतिक स्थानों को बचाकर रखना भी उपयोगी है। हम देखते हैं कि किसान भाई बहनों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो खेती भी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है।
1: जी हाँ, यही बात करें तो श्रोता साथियों, पशु हमारी भाषा नहीं बोल सकते लेकिन उनकी भी आवश्यकताएं और संवेदनाएं होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: पालतू पशुओं को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी, सुरक्षित रहने की जगह और आवश्यक देखभाल मिलना चाहिए। सड़क पर घूमने वाले पशुओं के प्रति भी संवेदनशीलता जरूरी है।

0: हम।
1: वाहन चलाते समय सावधानी रखना, पशुओं को परेशान न करना और जागृति जी घायल पशु दिखाई दे तो स्थानीय पशु चिकित्सा और संबंधित सहायता तक सूचना पहुंचाना हमारी जिम्मेदार व्यवहार है।
0: बिल्कुल,
1: पशुओं के साथ हिंसक या क्रूर व्यवहार न करना समाज की मानवीय संवेदनशीलता को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ वन्य जीवों का संरक्षण करने का अर्थ यह भी है कि हम उनके प्राकृतिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। श्रोताओं, जंगल में वन्य जीव दिखाई देने पर उनके करीब जाने, उन्हें छेड़ने, उन्हें भोजन देने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने देना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित व्यवस्था है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और युवाओं को भी प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति सही जानकारी देना जरूरी है ताकि वे रोमांच या मनोरंजन के लिए किसी वन्य जीव को परेशान न करें।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही है।
0: बिल्कुल,
1: कि पशु पक्षियों की रक्षा करना किस तरीके से हमारी जिम्मेदारी है और ये किस तरीके से हमारी प्रकृति की सुरक्षा भी है। तो आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि वन्य जीवों से दूरी और सुरक्षा का हमें ध्यान कैसे रखना है, यहीं बात करें प्लास्टिक और कचरे से खतरे की, तो श्रोता साथियों, हमारे द्वारा फेंका गया कचरा केवल गंदगी नहीं फैलाता बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी खतरा बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: खुले में पड़ा प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री और अन्य कचरा पशुओं के संपर्क में आ सकता है। इसलिए जागृति जी, घर, खेत, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा इधर उधर न फेंकना हमारे लिए जरूरी है। कचरे को अलग अलग करके उचित स्थान पर डालना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ गांव केवल इंसान के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी सुरक्षित गांव होता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जल स्रोतों का महत्व केवल मनुष्य के लिए नहीं है। तालाब, नदियाँ, कुएं और छोटे प्राकृतिक जल स्रोत अनेक जीवों के जीवन का आधार होते हैं। अगर गांव के तालाब और जल स्रोत स्वच्छ रहे, उनमें कचरा न डाला जाए और उनके आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र सुरक्षित रहे, तो बहुत सारे पशु पक्षियों को लाभ मिल सकता है। जल संरक्षण इसीलिए भी जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि पानी की कमी का सीधा असर जीव जगत पर पड़ता है। प्रकृति संरक्षण की आदत बचपन से विकसित की जा सकती है। स्कूलों में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने, पौधारोपण करने, स्थानीय पशु पक्षियों की जानकारी जुटाने और स्वच्छता अभियान जैसे छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। युवा अपने गांवों में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सोशल मीडिया और सामुदायिक माध्यमों के जरिए पशु पक्षी संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम कह सकते हैं अंजलि कि युवा केवल भविष्य की ताकत नहीं है बल्कि वर्तमान में प्रकृति के प्रहरी भी बन सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि प्रकृति की रक्षा अकेले किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। जब पूरा समुदाय मिलकर काम करता है तो परिणाम अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गांव में सामुदायिक स्तर पर हम कुछ संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटेंगे, जल स्रोतों में कचरा नहीं डालेंगे, पशु पक्षियों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे, गर्मियों में पक्षियों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, घायल पशु पक्षी मिलने पर उचित सहायता की सूचना देंगे, जंगल और प्राकृतिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचेंगे और बच्चों को प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाएंगे।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि यही सामुदायिक जिम्मेदारी सच्चे स्वराज की भावनाओं को मजबूत कर सकती है। जहाँ गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों और अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी स्वयं समझता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज हम जो प्रकृति देखते हैं वो हमें आने वाली पीढ़ियों से मिली हुई संपत्ति नहीं बल्कि उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे, जंगल और जल स्रोत नष्ट करेंगे, जीव जंतुओं के आवास खत्म करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए श्रोताओं, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। गांव का विकास हो, सड़कें और सुविधाएं बढ़े, कृषि आगे बढ़े, लेकिन साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा भी होती रहे।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि पशु पक्षी प्रकृति से अलग नहीं है और हम मनुष्य भी प्रकृति से अलग नहीं है। हम सभी एक ही प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। जब किसी पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, खेत में तितली मंडराती है, तालाब में जीव जंतु पानी पीते हैं और गांव की गलियों में पशु सुरक्षित रहते हैं, तब प्रकृति जीवंत दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आइए हम सभी केवल पशु पक्षियों के प्रति दया नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव रखें, अपने आसपास की पेड़ बचाएं, जल स्रोत बचाएं, स्वच्छता रखें और जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करें, क्योंकि पशु पक्षी बचेंगे तो प्रकृति मुस्कुराएगी, प्रकृति बचेगी जागृति जी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी।
1: बिल्कुल अंजलि, आज की इस चर्चा से बस इतना याद रखिए श्रोता साथियों कि पशु पक्षी हमारे आसपास रहने वाले जीव मात्र नहीं बल्कि प्रकृति के ऐसे साथी हैं जिनके बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम सब एक छोटा सा प्रण ले, अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचाएं, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, पशु पक्षियों के लिए पानी और सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था करें और किसी भी जीव को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि जब हम किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखते हैं, किसी पशु के प्रति संवेदना दिखाते हैं या एक पेड़ को बचाते हैं, तब हम केवल एक जीव की मदद नहीं करते बल्कि प्रकृति की कड़ी को मजबूत करते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई बहनों, आप एक अरे विचार कर रहे हो कि जया पेड़ की छांव में आपने रहो, या आपने में कितनी शांति मिली है, जया हवा में आपने हाल हो, ये भी आपने थकी कई आश लागे है। अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा। प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा लूंगा, मैं आपकी धरती में जीवन दान डालूंगा। होवे, प्रकृति ने बचाओ, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नया कदम है, ये आबा वाला काल में बदलाव की शुरुआत है। वागुर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी पढ़ाई का तरीका बदलता है, कभी काम करने का तरीका, कभी हमारी जिम्मेदारियां और कभी हमारे सपने भी नई दिशा मांगते हैं। ऐसे में मन में डर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम सोचते हैं कि अगर बदलाव के बाद सब कुछ गलत हो गया तो, लेकिन श्रोता साथियों जरा सोचिए कि अगर हम सिर्फ डर की वजह से वहीं खड़े रह जाएं तो क्या हम अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बदलाव को स्वीकार करना ही होता है। तो आज सपनों की उड़ान में हम बात करेंगे कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव से भागते रहना हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। बातें ढेर सारी कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों आपसे रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव से भागना हमारे लिए क्यों नुकसानदेह हो सकता है। यही सबसे पहली बात आती है कि बदलाव से डरना क्यों स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें उसके परिणाम का पता नहीं होता। यही अनिश्चितता हमारे मन में डर पैदा करती है। नई चीजों को लेकर असफल होने का डर होता है, पुरानी आदतों और परिचित माहौल को छोड़ना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है, और कई बार दूसरों की बातों और आलोचना का डर भी हमें रोकता है। पहले की असफलता के कारण भी कई बार श्रोता साथियों हम दोबारा कोशिश करने से डर सकते हैं। इसलिए डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण हमेशा पीछे हट जाना हमारे विकास में रुकावट बन सकता है। यही बात आती है कि बदलाव से भागने पर हम हमारे जीवन में क्या खो सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि बदलाव से बचना आसान रास्ता है, लेकिन इसका असर लंबे समय में दिखाई देता है। जैसे कि नई चीज सीखने का अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, पुरानी समस्या उसी तरह हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो सकता है, हम अपनी क्षमता को पहचानने का मौका खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई युवा नई तकनीक सीखने से सिर्फ इसलिए बचता है क्योंकि उसे लगता है कि यह मुश्किल है। कुछ समय बाद वही तकनीक उसके काम और रोजगार के लिए जरूरी हो सकती है। ऐसे में बदलाव से बचना उसके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अगर वो बदलाव को समय रहते स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई भी समस्या नहीं होती है। यही अब कहना चाहेंगे कि बदलाव का मतलब श्रोता साथियों एक दिन में हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है ऐसा नहीं है। बदलाव में हम अपनी दिनचर्या में एक अच्छी आदत जोड़ सकते हैं, नई जानकारी नई कला सीखने का बदलाव कर सकते हैं, अपनी गलत आदत को पहचान कर उसमें सुधार करने का बदलाव कर सकते हैं, किसी नए अवसर को आजमाने की हिम्मत करना भी बदलाव की शुरुआत है। इसलिए श्रोता साथियों, बदलाव को हमेशा बड़ी और कठिन चीज समझने के बजाय छोटे कदम से शुरुआत की जा सकती है। जैसे कि हमारी कोई ऐसी आदत है जो बहुत खराब है और अक्सर घर के सभी सदस्य हमें उसके लिए हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। लेकिन जब हमें महसूस होता है कि वाकई में इन सारी चीजों से मेरे साथ साथ मेरे घर परिवार और अन्य सदस्यों को भी परेशानी हो रही है, तो हमें उसकी शुरुआत धीरे धीरे करनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि हमें उसमें बदलाव करना है, तो उसकी शुरुआत एक दिन दो दिन कुछ मिनट करने से और धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से ही हम उसको बदल सकते हैं। बदलाव से हमें डरने की जरूरत नहीं है, बदलाव को स्वीकार करके अपने जीवन को उस रूप में देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे जीवन की आने वाली जो चुनौतियां हैं ना तो हम उनका सामना कर पाएंगे और कभी भी हम हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे जीवन को हम अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा, और बदलाव को स्वीकार करते हुए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाकर हम हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि आज बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है कि बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस बदलाव से भागना हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है, तो बातें इसी तरह आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से बदलाव का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं होता है, कि हम एक दिन में हमारी जिंदगी बदल दें। बदलाव को समझें कि जो बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में आगे चलकर किस तरीके से हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा और कैसे हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। यही अब बात आती है कि डर को समझना है और फिर उस पर कदम उठाने हैं। जी हाँ, अगर किसी बदलाव से श्रोता साथियों हमें डर लग रहा है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर किस बात का है। खुद से हम पूछें कि मुझे असफल होने का डर है या लोगों की बातों का। अगर मैं कोशिश करूंगा तो क्या ये हो जाएगा? क्या मैं इस बदलाव के लिए छोटी शुरुआत कर सकता हूँ? जी हाँ श्रोता साथियों, जब हम डर को इन सवालों के जरिए पहचान लेते हैं तो उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। हर बदलाव में तुरंत सफलता जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत में गलती होगी, ये हो सकता है, लेकिन वही गलती हमें आगे बेहतर करने का रास्ता भी दिखाती है। हमारे आसपास की जो दुनिया है वो भी हम देख रहे हैं कि लगातार बदल रही है। पढ़ाई, रोजगार, खेती, तकनीक और काम करने के तरीकों में नए बदलाव आते रहते हैं। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो नए अवसरों को समझना आसान होगा। किसी युवा के लिए नई तकनीक सीखना रोजगार का रास्ता खोल सकता है। किसी किसान के लिए खेती की नई जानकारी उत्पादन को बेहतर करने में मदद कर सकती है। इसी तरह कोई महिला नई कला या कौशल सीखकर अपने लिए आय का नया रास्ता बना सकती है। इसलिए बदलाव सिर्फ चुनौती नहीं है, यह सीखने और आगे बढ़ने का अवसर भी हो सकती है। वहीं अब बात आती है कि बदलाव को स्वीकार करने की शुरुआत हम खुद से कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों, हमें खुद के बदलने का इंतजार करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद से क्या बदलाव कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं उसके लिए रोज थोड़ा समय निकालें। किसी नई चीज को समझने से पहले उसकी मुश्किलें जो हैं उसको देखकर उसे छोड़े नहीं, बल्कि उस मुश्किलों का हल क्या हो सकता है ये हमें देखने की जरूरत है। और जरूरत पड़ने पर हम हमारे परिवार, मित्र और किसी जानकार की मदद भी ले सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। याद रखिए कि बदलाव एक दिन में पूरा नहीं होता, यह लगातार सीखने और कोशिश करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए बदलाव से भागने के बजाय उसे समझना और छोटे कदमों से आगे बढ़ना ही हमें नई संभावनाओं तक ले जा सकता है। इसी के साथ कहना चाहूंगी कि बदलाव हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हम चाहें या न चाहें, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसे में हमारे सामने श्रोता साथियों दो रास्ते होते हैं। या तो हम बदलाव को समझकर उसके अनुसार खुद को तैयार करें, या फिर डर के कारण उससे दूर होते रहें। जी हाँ, बदलाव को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हर नई चीज को बिना सोचे अपना लिया जाए। इसका अर्थ है कि हर नई परिस्थितियों को समझने, उससे सही जानकारी ले और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करें। अगर किसी बदलाव से डर लग रहा है तो खुद को समय दें, सवाल पूछें, जानकारी जुटाएं और छोटी शुरुआत करें, क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम नहीं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि किस तरीके से बदलाव होने पर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उस बदलाव से दूर भागते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व न करो भोजन। हो गए क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा कहते हैं कि परिवार हमारे जीवन की पहली ताकत होता है, लेकिन परिवार के बाद हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हमारे जीवन में खास जगह रखते हैं। इन्हीं में सबसे करीब होते हैं हमारे पड़ोसी।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ दोस्तों, पहले के समय में पड़ोसी का मतलब सिर्फ पास में रहने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बल्कि वह सुख दुख का साथी, जरूरत के समय मदद करने वाला और परिवार का हिस्सा माना जाता था। किसी की घर शादी हो, बच्चा पैदा हो, कोई बीमार पड़े या घर में कोई परेशानी आए, आसपास के लोग बिना बुलाए मदद के लिए पहुंच जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मनीषा, आज का समय बदल गया है। मोबाइल और इंटरनेट और व्यस्त जीवन ने हमारी दुनिया को काफी बदल दिया है। हम दूर बैठे लोगों से तो आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार अपने घर के पास रहने वाले व्यक्ति से ही बातचीत नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज भी पड़ोसी का रिश्ता उतना ही जरूरी है? तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता कितना जरूरी है हमारे लिए।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता हमारे लिए कितना जरूरी है इसको लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अकेले जीवन नहीं जी सकता है। परिवार के बाद श्रोता साथियों, हमारे जीवन में जिन लोगों का सबसे ज्यादा महत्व होता है उनमें पड़ोसी भी शामिल होते हैं। पड़ोसी वे लोग होते हैं जो हमारे घर के आस पास रहते हैं और हमारे दुख सुख को बहुत करीब से देखते हैं। पहले के समय में श्रोता साथियों, पड़ोसी का रिश्ता केवल एक दूसरे के घर के पास रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि पड़ोसी एक दूसरे के परिवार का हिस्से जैसे होते थे। किसी के घर में खुशी होती तो पूरा पड़ोसी ही वो शामिल होते थे। किसी के घर अगर परेशानी होती तो बाकी जो लोग होते थे वो जानकर खैरियत पूछते थे।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पड़ोसी हमारे घर के सबसे नजदीक रहने वाला व्यक्ति होता है। जरूरत पड़ने पर परिवार का सदस्य हम तक पहुंचने में अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो समय लग सकता है, लेकिन पड़ोसी जो है वो उससे पहले हमारे पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सी बार घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, बुजुर्गों को अस्पताल ले जाना पड़े, बच्चों को किसी समय सहायता चाहिए हो, किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़े, ऐसे समय में पड़ोसी का सहयोग बहुत काम आता है। इसलिए पड़ोस किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन की व्यवहारिक सूरत भी है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन में हर समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। कभी अचानक बीमारी आ जाती है, कभी घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी परिवार के किसी सदस्य को बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में मनीषा, आसपास रहने वाला भरोसेमंद पड़ोसी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। घर की देखभाल कर सकता है, जरूरत की चीज पहुंचा सकता है या फिर घर के दूसरे सदस्यों को सूचना दे सकता है। लेकिन यह भरोसा एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए पहले से एक दूसरे के साथ अपनापन और विश्वास का जो रिश्ता है वो होना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि साथियों, आज का समय है वो तेजी से बदल रहा है। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, लोग अपने काम में ज्यादा व्यस्त होने लगे हैं, मोबाइल और इंटरनेट से बात करने का तरीका है वो भी बदल गया है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार ऐसा होता है साथियों कि एक ही बिल्डिंग में कई सारे लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे को उन्हें नाम भी नहीं पता होता। लोग सोशल मीडिया पर दूर बैठे लोगों से जुड़े रहते हैं लेकिन घर के बगल में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करने का समय उनके पास नहीं होता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, पड़ोसी का रिश्ता है वो हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के लोग हर समय हमारे आसपास मौजूद नहीं होते हैं लेकिन पड़ोसी हमारे नजदीक रहते हैं। अचानक कोई परेशानी हो, घर में बुजुर्ग अकेला हो, बच्चों की मदद करने की जरूरत हो या कोई आपात स्थिति हो, तो ऐसे में अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ही वही हमारे काम आते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, आज के आधुनिक समय में भी पड़ोसी का रिश्ता केवल सामाजिक संबंध तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर सहयोग, इंसानियत दिखाने का भी रिश्ता है।
1: बिल्कुल मनीषा, पड़ोस का वातावरण बच्चों के व्यवहार और सीखने पर भी असर डालता है। जब बच्चे आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना सीखते हैं और जरूरतमंद की मदद करते लोगों को देखते हैं तो उनमें सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। गांव और मोहल्ले में बच्चे अक्सर साथ खेलते रहते हैं। इस दौरान वे केवल खेलना ही नहीं सीखते बल्कि आसपास में चीजें बांटना, छोटे बड़े का सम्मान

0: करना, मिलकर समय हल करना और एक दूसरे की मदद करना भी सीखते हैं। इससे बच्चा पड़ोस के जो बच्चे हैं उनसे कई तरीके के सामाजिक व्यवहार भी सीख पाता है।
1: जी हाँ,
0: आज कई परिवारों में बुजुर्ग के बच्चे नौकरी या दूसरे कारणों से दूर रहते हैं। ऐसे में पास रहने वाला जो पड़ोसी है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी उनसे हाल चाल पूछ लेना, जरूरत की दवा या सामान लाने में मदद कर देना, अकेले होने पर कुछ देर बातचीत कर लेना, ये छोटी छोटी बातें बुजुर्गों के लिए बहुत मायने रखती है। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग भी अपनी समझ और अनुभव से बच्चों और युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस तरह पड़ोसी का रिश्ता दोनों तरफ से सहयोग का रिश्ता बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, श्रोता साथियों, पड़ोसी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता है, फिर भी कई बार यह रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। इनसे हमारा रोज मिलना जुलना हो सकता है, कभी रास्ते में मुलाकात हो सकती है, कभी बाजार में, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में, तो कभी जरूरत के समय जरूरत पड़ सकती है। पड़ोसी से अच्छा संबंध बनाने के लिए श्रोता साथियों बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। एक दूसरे का सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर मदद करना, खुशी में शुभकामनाएं देना, परेशानी में साथ खड़े होना, एक दूसरे की निजी बातों का सम्मान करना अच्छे पड़ोसी की पहचान हो सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लिए हमारे जो पड़ोसी में जो व्यक्ति रह रहे होते हैं उनसे व्यवहार रखना क्यों जरूरी है और किस तरीके से वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है। तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता हमारे लिए क्यों जरूरी है, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही श्रोता साथियों, बात करें तो हमारे समाज में त्योहार और सामाजिक अवसर लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। पड़ोसी एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं, प्रसाद बांटते हैं और मिलकर शुभकामनाएं मनाते हैं। जरूरी नहीं मनीषा कि हर त्योहार बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाए। कभी साथ बैठकर बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख पूछना और छोटी सी खुशी साझा करना भी रिश्ते को मजबूत कर देता है। ऐसे अवसर से पड़ोस में अपनापन बढ़ता है और लोगों के बीच दूरी भी कम होती है। लिखते हैं श्रोता साथियों कि आज हमारे पास बातचीत करने के लिए मोबाइल है, सोशल मीडिया पर हमारे सैकड़ों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने रहने वाले व्यक्ति का नाम तक हमें पता नहीं होता। व्यस्तता अपनी जगह जरूरी है, लेकिन पड़ोसी से बिल्कुल संपर्क न करना भी ठीक नहीं है। हर किसी की निजी जिंदगी और अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए पड़ोसी के जीवन में अनावश्यक दखल देने के बजाय सम्मान और सहयोग का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा पड़ोसी वह नहीं है जो हर समय हमारे घर आता जाता रहे, बल्कि वह है जो जरूरत के समय साथ खड़ा हो और हमारी निष्ठा का भी सम्मान करे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पहले के समय में गांव और मोहल्ले के जो लोग होते थे उनका रिश्ता है वो मजबूत रहता था। आसपास के घरों में लोग एक दूसरे को से अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। किसी के घर श्रोता साथियों शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला काम करने में हाथ बटाता था।
0: बिल्कुल।
1: किसी के घर कोई बीमार हो जाता था तो पूरा मोहल्ला है वो हालचाल पूछने जाता था। त्योहारों का आनंद है वो भी अंजलि जी हम देखते थे कि सामूहिक रूप से लिया जाता था। दिवाली, होली, गणेश उत्सव हो या कोई अन्य त्योहार हो श्रोता साथियों, तो लोग एक दूसरे के घर जाते थे। इस तरह पड़ोसी केवल घरों का समूह नहीं था बल्कि परिवार जैसा एक वातावरण बन जाता था।
0: जी हाँ मनीषा, अच्छा पड़ोसी बनने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती है, शुरुआत छोटी बातों से की जा सकती है। रास्ते में मिलने तो मुस्कुराकर अभिवादन करें, पड़ोसी के घर कोई परेशानी हो तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें, बच्चों को पड़ोसियों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सिखाएं, किसी के निजी मामले में बिना जरूरत दखल न दें और छोटी छोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी है कि हम पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो व्यवहार हम खुद अपने लिए चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, एक अच्छा गांव या मोहल्ला केवल अच्छे घरों से नहीं बनता बल्कि वहां रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों से बनता है। जब पड़ोसी एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो कई छोटी समस्याएं सामूहिक रूप से हल होती हैं। पानी, स्वच्छता, रास्ते, बच्चे और बुजुर्गों की मदद करना और किसी आपात स्थिति जैसे मामलों में आपसी सहयोग बहुत उपयोगी साबित होता है।
1: यही
0: सहयोग मनीषा धीरे धीरे पूरे समुदाय में विश्वास पैदा करता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की जिंदगी वो तेजी से बदल रही है। हर एक व्यक्ति के ऊपर काम की जिम्मेदारी है और उसमें वो काम में व्यस्त है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, पड़ोसी का जो रिश्ता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पड़ोसी हमारे सबसे नजदीक रहने वाले लोग होते हैं, इसलिए अचानक होने वाली छोटी बड़ी जो समस्या होते हैं उनमें वो तुरंत मदद कर सकते हैं। मान लीजिए श्रोता साथियों के घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो जाए और परिवार का कोई सदस्य घर नहीं है, ऐसी स्थिति में अंजलि जी हम देखते हैं कि पास रहने वाला पड़ोसी ही वो हमारी सहायता तुरंत कर सकता है। इस तरह श्रोता साथियों, घर में पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कोई सामान अचानक खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी और काम के जो लोग होते हैं वो हमारे पड़ोसी ही होते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, पड़ोसी हमारे जीवन का वह रिश्ता है जिसे हम चुनते नहीं है लेकिन जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज भले ही जीवन पहले से ज्यादा तेज हो गया हो, हमारे पास बातचीत के साधन बढ़ गए हो और हमारी व्यस्तता भी बढ़ गई हो, फिर भी जरूरत के समय इंसान को इंसान का साथी चाहिए होता है।
1: जी हाँ।
0: पड़ोसी से रिश्ता मजबूत करने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी की निजी जिंदगी में दखल दें, बल्कि इसका मतलब है कि एक दूसरे का सम्मान करें, जरूरत के समय सहयोग देना और अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित और संवेदनशील और भरोसेमंद बनाना।
1: जी हाँ।
0: कई बार रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे संवेदनाओं से बनते हैं। किसी पड़ोसी का हाल पूछ लेना, जरूरत में हाथ बढ़ा देना, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराने में मदद कर देना, किसी परेशानी में उसके साथ खड़े हो जाना, ये छोटे काम समाज में भरोसे की बड़ी नींव रखते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई बार परिवार के लोग नौकरी, पढ़ाई या दूसरे जो काम है उनमें उनके लिए वे शहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों, पड़ोसी आसपास रहने वाले जो लोग हैं वही हमारा सहारा बनते हैं। आज बहुत से परिवारों में बच्चे नौकरी पर चले जाते हैं, पढ़ाई के कारण दूर चले जाते हैं शहरों में। ऐसे में अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो भी घर पर अकेले रहते हैं, उनके साथ पड़ोसी का रिश्ता है वो श्रोता साथियों महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई बुजुर्ग अकेला रहता है तो कभी कभी अंजलि जी हम देखते हैं कि उसका हाल चाल पूछने पड़ोसी आ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें दवा देते हैं, डॉक्टर तक पहुंचाने और किसी जरूरी काम में मदद कर सकते हैं। यह मदद श्रोता साथियों केवल काम करने तक सीमित नहीं होती है, कई बार बुजुर्गों के लिए एक छोटी सी बात किसी से कर लेना भी महत्वपूर्ण होता है। उनको लगता है कि घर में कोई बात करने के लिए नहीं है तो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अंजलि जी हम देखते हैं कि जो हमारे पड़ोस के लोग होते हैं वो हमारे घर आकर बुजुर्गों से बातें करते हैं, या हमारे घर के लोग किसी दूसरे घर जाकर बुजुर्गों से बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे जो बुजुर्गों का अकेलापन है वो भी दूर हो जाता है।
0: जी हाँ मनीषा, हम चाहे गाँव में रहते हो या शहर के मोहल्ले में, हमारे आस पास रहने वाले लोग हमारी सामाजिक दुनिया का हिस्सा है। अगर हम अपने घर की चार दीवारी से थोड़ा बाहर निकलकर अपने पड़ोस को भी अपना माने तो अकेलेपन की जगह सहयोग, दूरी की जगह अपनापन और अविश्वास की जगह भरोसा पैदा हो सकता है। एक अच्छा पड़ोस केवल पास पास बने घरों का समूह नहीं होता बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले लोगों का समुदाय होता है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं है। हम जिस गली मोहल्ले गाँव में रहते हैं वहाँ का वातावरण हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार, सहयोग और विश्वास ही किसी स्थान को रहने योग्य और सुरक्षित बनाता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि महिलाओं के लिए पड़ोसी के सहयोग की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं का जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जब उन्हें तुरंत मदद की जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: आसपास रहने वाली महिला जो पड़ोसी होती है वो सहयोग का माध्यम बन सकती है, किसी जरूरी काम के लिए या बच्चों को संभालने के लिए, किसी परेशानी में साथ देने के लिए, या जरूरत पड़ने पर श्रोता साथियों कई सारी बातें हैं जो हम पड़ोसी से साझा कर सकते हैं। हम देखते हैं अंजलि जी कि महिलाओं के बीच अच्छा संबंध है वो भी बना रहता है, सामाजिक सहयोग है वो भी बढ़ता है साथियों।
0: जी हाँ मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो रही है। आगे भी ये बातें जो है महत्वपूर्ण वो निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे कि आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस विषय को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि बीमारी के समय पड़ोसी हमारे लिए किस प्रकार मददगार हो सकते हैं इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बीमारी के समय व्यक्ति को केवल दवा की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर परिवार का सदस्य किसी कारण से बाहर है तो पड़ोसी छोटी ज़रूरतों में मदद कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर तक पहुँचाने में सहायता कर सकते हैं, घर के लोगों को सूचना दे सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर सामान लाना। हालांकि श्रोता साथियों, बीमारी के मामले में पड़ोसी को बिना जानकारी के दवा बताना या इलाज की कोशिश करना हमें नहीं कर चाहिए। सही सलाह के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की मदद हमें लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, यही बात करी। तो आज के समय में पड़ोसी का रिश्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जीवन जो है वो केवल परिवार तक सीमित नहीं है। हम जिस गली मोहल्ले या गाँव में रहते हैं वहाँ का वातावरण हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार, सहयोग और विश्वास ही किसी स्थान को रहने योग्य और सुरक्षित बनाता है। आज पहले की तुलना में लोगों के पास समय कम है, काम, पढ़ाई और दूसरे जिम्मेदारियों के कारण आपसी मेलजोल कम होता रहा है। ऐसे में पड़ोस के रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक समय की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी बातचीत, एक दूसरे की स्थिति को समझना और जरूरत पड़ने पर सहयोग करना ही काफी है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता हमें ये एहसास भी देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में अकेले नहीं हैं। किसी परेशानी के समय तुरंत सहायता मिलना, किसी खुशी को साझा करने वाला व्यक्ति मिलना, रोजमर्रा की छोटी जरूरतों में एक दूसरे का सहारा बनना जीवन को आसान बनाता है। साथ ही पड़ोस में रहते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी है, इसलिए अच्छे पड़ोसीपन का आधार केवल मेलजोल नहीं बल्कि विश्वास, मर्यादा और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान भी है। किसी की निजी बातों को फैलाना, बिना जरूरत के हस्तक्षेप करना या छोटी बातों को विवाद में बनाना भी पड़ोस के वातावरण को खराब कर सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं। किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बड़ी परेशानी आ जाए या परिवार का कोई सदस्य कठिन समय से गुजर रहा हो, तो उस समय श्रोता साथियों पड़ोसी का संवेदनशील व्यवहार बहुत जरूरी होता है। दुखी परिवार के पास जाकर केवल औपचारिक बातें करना जरूरी नहीं, कहीं बार श्रोता साथियों चुपचाप साथ खड़े रहना भी मददगार हो सकता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों बेवजह सवाल पूछना, निजी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, दुखी परिवार के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। पड़ोसी की मदद के साथ उसकी भावनाएं, निजीता का सम्मान भी हमें करना चाहिए। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव विश्वास से होती है। पड़ोसी में विश्वास तभी बनता है जब लोग एक दूसरे की बातों को सुरक्षित रखे और जरूरत के समय साथ दें। अगर कोई पड़ोसी अपनी निजी परेशानी साझा करता है तो उसे दूसरे के बीच चर्चा का विषय हमें नहीं बनाना चाहिए। छोटी बातों को बड़ा बनाना, अफवाहें फैलाना या दूसरों के परिवारों के मामले में अनावश्यक दखल देना रिश्तों को खराब कर सकता है। विश्वास बनाने में समय लगता है श्रोता साथियों, लेकिन एक गलत व्यवहार से विश्वास टूट सकता है।
1: जी हाँ मनीषा, एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात बताना चाहेंगे। इस कहानी का विषय है एक दरवाजे की दूरी। जी हाँ दोस्तों, एक गांव में दो परिवार आसपास रहते थे। दोनों के घरों के बीच बस एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन कई महीनों से दोनों परिवार की आपस में कोई खास बातचीत नहीं थी।
0: जी हाँ।
1: एक दिन अचानक एक परिवार के बुजुर्ग की रात को तबीयत खराब हो गई। घर के लोग घबरा गए। उसी समय पड़ोसी ने आवाज सुनी और तुरंत अपने वाहन से उन्हें अस्पताल ले गया और रात भर परिवार के साथ खड़ा रहा। सुबह बुजुर्ग की हालत बेहतर हुई तो परिवार ने पड़ोसी को धन्यवाद दिया। पड़ोसी ने मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद कैसा, पड़ोसी है इसलिए तो पड़ोसी का काम आया। उस दिन दोनों परिवारों के को एहसास हुआ कि उनके घरों के बीच दीवार जरूर है, लेकिन दिलों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और उनका पड़ोसी फिर से उनका अपनापन हो अपनापन बढ़ने लगा। पड़ोसी का रिश्ता श्रोता साथियों रोज मिलने जुलने से नहीं बल्कि जरूरत के समय एक दूसरे के काम आने से मजबूत होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि आधुनिक समय में पड़ोसी एक दूरी बीच एक दूसरे की दूरी क्यों बढ़ रही है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज लोगों के पास समय कम है। नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के कारण लोग व्यस्त रहते हैं। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने लोगों को दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी आस पास रहने वाले लोगों से दूरी भी अंजलि जी बढ़ जाती है। शहरों में लोग बार बार घर बदलते हैं और साथ ही साथियों हम देखते हैं कि इसके अलावा कुछ लोग वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। निजीता जरूरी है, लेकिन इसका मतलब श्रोता साथियों यह नहीं है कि हम आसपास रहने वाले लोगों को भी नजरअंदाज कर दें। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने बातचीत के तरीके को बदल दिया है। आज लोग एक क्लिक में दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो तो हर किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल संपर्क वास्तविक पड़ोसी संबंध का पूरा विकल्प नहीं हो सकता। फोन पर संदेश भेजना अपनी जगह है श्रोता साथियों, लेकिन जरूरत पड़ने पर सामने खड़े होना एक अलग बात है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों से वास्तविक संबंध बनाए रखना भी हमारे लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि पड़ोसी से अभी के समय में हमारा रिश्ता मजबूत होना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण बातें आगे भी और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया है, यहीं कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि अगर हम अपने पड़ोस में रहने वाले अलग अलग उम्र के लोगों को समझने की कोशिश करें तो समुदाय में आपसी जुड़ाव मजबूत हो सकता है। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलता है, युवाओं को सहयोग और बुजुर्गों को अपनापन महसूस होता है। महिलाएं भी अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग का नेटवर्क बना सकती है जिससे रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इसलिए पड़ोसी का रिश्ता केवल जरूरत के समय काम आने वाला रिश्ता नहीं होता है मनीषा, यह हमारे सामाजिक जीवन की वह उस कड़ी का हिस्सा होता है जो अलग अलग परिवारों को एक समुदाय से जोड़ती है। जब हम अपने पड़ोस को बेहतर बनाने की शुरुआत अपने व्यवहार से करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे पूरे गाँव और समाज पर दिखाई देता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपने पड़ोसी से रिश्ता मजबूत करने के लिए किसी खास अवसर का इंतजार न करें, आज ही एक अभिवादन से शुरुआत की जा सकती है। हालचाल पूछा जा सकता है और यह भरोसा दिया जा सकता है कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी क्षमता के अनुसार साथ खड़े रहेंगे।
1: जी हाँ,
0: मजबूत समुदाय बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि रोज निभाई जाने वाली छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बनता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि पड़ोसी का संबंध केवल एक तरफ से मदद करने का नाम नहीं है, इसमें दोनों तरफ का सहयोग है वो बहुत जरूरी होता है। अगर पड़ोसी ने किसी समय आपकी मदद की है तो हमें भी अवसर आने पर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन श्रोता साथियों, मदद करते समय यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बदले में सामने वाला हमेशा मेरी मदद करेगा। सच्ची मदद वह होती है जिसमें इंसानियत और सहयोग की भावना होती है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि अच्छा पड़ोसी का संबंध एक महत्वपूर्ण हिस्सा और निजता का सम्मान करना है। किसी के घर में क्या चल रहा है, परिवार में किसकी क्या समस्या है, किसकी कितनी कमाई हो रही है या कोई अंदर की कोई बात होती है जिसका निर्णय लिया जा सकता है, इन बातों को जानना या दूसरों की चर्चा करने के लिए हमारे लिए वो नहीं होना चाहिए। साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने पड़ोसी के जीवन में उतना ही शामिल होना है जितना कि वह स्वयं उचित समझे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पड़ोस का रिश्ता हमारे सामाजिक जीवन की ऐसी कड़ी है जिसकी अहमियत अक्सर हमें तब समझ आती है जब जीवन में अचानक कोई मुश्किल सामने आती है। लेकिन किसी रिश्ते की मजबूती केवल संकट के समय दिखाई देने से नहीं बल्कि सामान्य दिनों में किए जाने वाले छोटे छोटे व्यवहार में तय होती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। आज के समय में लोगों की जीवन शैली बदल रही है, परिवार छोटे हो रहे हैं और कई लोग अपने काम के कारण अपने परिचितों और रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के साथ स्वस्थ संबंध जीवन में एक सामाजिक सहारा दे सकता है। इसके लिए रोज लंबी बातचीत जरूरी नहीं है, एक दूसरे की जरूरतों को समझना और उचित समय पर सहायता के लिए तैयार रहना काफी है।
1: जी हाँ,
0: अच्छे पड़ोसी का अर्थ यह भी नहीं है कि हम हर बात में एक दूसरे के जीवन में शामिल हो। सच्चा पड़ोसी वह है जो अपनापन भी रखे और मर्यादा भी समझे।
1: जी हाँ,
0: किसी की निजी परेशानी को चर्चा का विषय न बनाना, छोटी गलतियों को बढ़ावा न देना और मतभेद होने पर शांतिपूर्वक बात करना भी पड़ोसी निभाने का हिस्सा होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज के आधुनिक समय में भले ही श्रोता साथियों हमारी जीवन शैली है वो बदल गई है, मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया हो, लेकिन श्रोता साथियों पड़ोसी का महत्व है वो कभी कम नहीं होता है। बल्कि व्यस्त और तेज जीवन में पड़ोसी का रिश्ता है वो और भी गहरा होता जाता है। परिवार के सदस्य हर समय हमारे पास नहीं होते हैं, ऐसे में हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसी से जरूरत पड़ने पर हम मदद ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए उनका महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, बच्चों के लिए अच्छा सामाजिक वातावरण मिल सकता है और आपात स्थिति में उसकी मदद हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन श्रोता साथियों, अच्छा पड़ोसी संबंध केवल मदद लेने या मदद करने तक सीमित नहीं है, इसमें सम्मान, विश्वास, संवेदनशीलता, सहयोग और एक दूसरे की निजता का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ पड़ोस बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनता है, युवाओं को जिम्मेदारी समझाता है और बुजुर्गों को सामाजिक जुड़ाव देता है। जब अलग अलग परिवार एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं तो गाँव या मोहल्ला केवल रहने की जगह नहीं बनता बल्कि ऐसा समुदाय बनता है जहाँ लोगों को अपनापन का अनुभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि आज के समय में पड़ोसी की जो भूमिका

0: का है वो बहुत ही अलग है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो लिख लीजिए श्रोता साथियों कार्यक्रम का पता। हमारा पता है हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं श्रोता साथियों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना है SMS हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं साथियों, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। मैं नंबर फिर से बताना चाहूँगी साथियों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं, तो इसी बीच बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बागबान, गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर बर से बागबान रब है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं चंदूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, बाटापारा से जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी बाटापारा से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदई जोशी, अंशिका जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर, जगदलपुर बस्तर से हैं पूनम नायडू जी, पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। बागपति उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर बर से बागबान रब है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था बागबान फिल्म का, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत श्रोता साथियों आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं पर्दा है पर्दा। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी, लड्डू देविका चौधरी जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं बोरखड़ा पित्रामल से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुड़त, दिलीप सिंह पंवार जी। मजनू का डल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं शिशपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। और भी अनुरोध करता जुड़ रहे हैं रानी मानकर, राम मानकर, सबरी मानकर, ये केदारनाथ मानकर पुसद से जुड़ना चाह रहे हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बिबिसिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, सुमाश, ओम, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी गोस्वामी जी और दिशा गोस्वामी जी भी जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनुरोधकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पर्दा है पर्दा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

तेरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच चाहिए है पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी सौदागर। गीत के बोल हैं इलू इलू। फरमाइश करता हमारे बीच जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र मनहरण वर्मा जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से शुडम वड़तकर, शुडम वड़तकर, पन्नू और शुभम जी, किशोर वड़तकर, पन्नू वड़तकर जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, नरगिस, इसरास खातून जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, इंसान छिपा, पूजा परिहार। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमांश जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं इलू इलू। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच चाहिए जच्चा हरियाणा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं हमारे बीच में जज्जर हरियाणा से फरमाइश करता बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक भाटिया। इन श्रोताओं की फरमाइश है मोहब्बतें फिल्म का गीत चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कुंभार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, अर्पिता जी। जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, आपको बताना चाहूंगी बागपत से, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। फरमाइश करता है इस गीत के बागपत से हैं जगमोहन सिंह पदापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बेटी अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामनंद कश्यप। दिल्ली से जुड़ रहे रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इन श्रोताओं की फरमाइश है, गीत के बोल हैं, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। फरमाइश करता है जो इसी गीत के साथ और भी हैं जो जुड़ रहे हैं, नेपा नगर मध्य प्रदेश, सुजनशन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीतीश शाह, सुरभिजी शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, अजयन शाह, सुषमा कपूर जी। कश्मीर से जुड़ रहे फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी गंजुडवाना से, शमशल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान अंसारी जी। और भी हमारे श्रोता साथी बाटापरा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। लोरमे चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दादरी गेट भिवानी से। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। फरमाइश का गीत है श्रोता साथियों, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं नवाशहर पंजाब से। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को गंदीप थाटी, दीपता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका जी। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। पथरोड से है विजय अंबाड़कर, श्वेता अंबाड़कर, अक्षय, राधिका, ऋषिकेश अंबाड़कर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरे मेरे बीच में। तब तक आप बनी रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है मारवाड़ बेड़ा राजस्थान से। फरमाइश करता जुड़ रहे रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। इन श्रोताओं की फरमाइश है माई नेम इज खान फिल्म का गीत तेरे नैना। और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मुदनसारी, गुलाम शाबिराही, महराज जहां। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तेरे नैना। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दुल्हन दुल्हा, गीत के बोल ही हमने तुझको प्यार किया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगली, सोपान इगली, आशीष मेहकर जी। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडे, श्रीमती मंगलाजी भिंडे, विजय शुभम, पवन जरिए जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दुल्हन दूल्हा, गीत के बोल ही हमने तुमको प्यार किया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है बाबू, गीत के बोल हैं ये मेरा जीवन तेरे लिए है। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मेनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नाजियाना शेख, शाहिद शेख, अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमेब जी मुजावर। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से श्याम की टी, वंदना की टी, भाविका जी की टी। इस गीत के अनुरोध करता है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है बाबू, गीत के बोल हैं ये मेरा जीवन तेरे लिए है। इस गीत को आवाज दी किशोर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

चाह रहे हैं श्री रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुणे वाले पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, शाइशा जी सोनू ने। पंजाब से जुड़ रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली, गीत के बोल हैं सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, और इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटियाला से। फिल्म का नाम है मुस्कान, गीत के बोल ही जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण नीतू, निहारिका और वंश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से, संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमा जी शाहू और सुजिता जी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायरा जी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मेलेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनचे बिट्टू, पीबी कुतलेश जी। कुंभार गली श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनोने जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल हैं तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस गीत की फरमाइश करता है नुसार सलमानी, निसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, पलारे छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम टेलर, कृष्णा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं करेले से मोहम्मद आसिन अंसारी, शमशील अंसारी, नरसी अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर जी अंसारी और अंसारी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है खंडावाला से अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही है सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योतिष वर्मा, शिवांशी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं फनेस कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन, सौगात हमतरी जी। एकता कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड।

अखिल कांगड़ा, तन्वी बूट, अंकित जी कांगड़ा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल से, गीत की बोल है चल छैया छैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मन मंदिर, गीत के बोल हैं जादूगर तेरे नैना। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजुगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जी जयसवाल। मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी का साना। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया। जलाना शहर से जुड़ना चाह रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, बेबी सिया जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जादूगर तेरे नैना। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने किशोर कुमार और लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे जादूगर तेरे नैना। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत के फरमाइश करते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरजिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफार डावर जी। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं पूनम जी नायडू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं लाहौरा से डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, महेश कामलेश नेताम, महेनीर जी नेताम। इस गीत के अनुरोध करता है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी झाझोरिया, गंदीप झाझोरिया, गुड्डू जी झाझोरिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करे। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकाले। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाए। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवा साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो छोटी सी लगती है, लेकिन अगर हम सब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो इसका असर हमारे घर से लेकर हमारे पूरे समाज और पर्यावरण तक दिखाई दे सकता है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम रोज न जाने कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, कांच की शीशियां, पुराने कपड़े, डिब्बे, कागज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत सारा।
0: जी जी,
1: इस्तेमाल के बाद अक्सर हमारा पहला विचार होता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हर ऐसी चीज वास्तव में बेकार हो चुकी होती है? शायद नहीं। कभी कभी किसी वस्तु का हमारे लिए उपयोग खत्म होता है, लेकिन उसका जीवन वही खत्म नहीं होता। उसे किसी दूसरे काम में लिया जा सकता है और किसी और व्यक्ति को दिया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: उसकी मरम्मत की जा सकती है और उसे नए रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है श्रोता साथियों, फेंकने से पहले हमें सोचना होगा। तो आज का हमारा विषय है फेंकने से पहले सोचे चीजों को दोबारा उपयोग करने की संस्कृति।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि विषय आज का काफी महत्वपूर्ण है और हम बात कर रहे हैं कि ऐसी आदत की जो देखने में तो काफी छोटी लगती है लेकिन अगर अपना ली जाए तो ये हमारा जीवन बदल सकती है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, हम बात कर रहे हैं कि फेंकने से पहले हमें सोचना है और चीजों को वापस उपयोग में लाना है। आपको बताना चाहेंगे युवा साथियों कि हमारे लिए चीजों को फेंकना तो आसान होता है लेकिन दोबारा उपयोग करना एक समझदारी भरा कार्य भी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि आज की तेज जिंदगी में चीजों को खरीदना और बदलना पहले से काफी आसान हो चुका है। कोई सामान पुराना हुआ, उसमें छोटी सी खराबी आई या उसका नया मॉडल बाजार में आ गया तो हम कई बार पुराने सामान को किनारे कर देते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हर पुरानी चीज कचरा नहीं होती साथियों। मान लीजिए कि घर में कोई पुराना कांच का जार है, उसमें अचार मसाले या कोई खाद्य सामग्री रखी जा सकती है। पुराने कपड़ों से थैले पोछे या दूसरे उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं। पुराने डिब्बों को सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही पुरानी किताबें किसी छोटे बच्चे के काम आ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज पुरानी हो गई है या नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या इसका कोई दूसरा उपयोग हो सकता है। और यही सवाल हमारी सोच में बदलाव लाएगा। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को दोबारा उपयोग करते हैं तो इसका फायदा केवल हमारी जेब को नहीं होता। किसी नई वस्तु को बचाने के लिए कच्चे माल, पानी, ऊर्जा, मशीनों और परिवहन की भी जरूरत होती है।
0: जी जी।
1: अगर हम पहले से मौजूद वस्तु का उपयोग लंबे समय तक कर लेते हैं तो नई वस्तु खरीदने की जरूरत कुछ हद तक हमें कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, आपको बताएं तो अगर कोई कपड़ा थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन अभी उपयोग में लाया जा सकता है तो उसे तुरंत फेंकने के बजाय हम उसका दूसरा उपयोग सोच सकते हैं। इसी तरह घर में रखे पुराने फर्नीचर को देखकर तुरंत नया खरीदने के बजाय उसकी मरम्मत या नया रूप देने के बारे में भी सोचा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यही सोच हम इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली आदत से निकाल कर इस्तेमाल करो, संभालो और दोबारा उपयोग करो की ओर ले जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, और इन सभी कार्यों में हमारी युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा क्यों युवा साथियों, तो किसी भी बदलाव को समाज में आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। युवा साथी जागृति जी केवल नई चीजें अपनाने वाली पीढ़ी नहीं है बल्कि नई सोच को समाज तक पहुंचाने वाली पीढ़ी भी है।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करता ही है, कॉलेज और स्कूल में अलग अलग गतिविधियों से भी वे जुड़ते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ विचार साझा करते हैं। इसलिए अगर युवा रीयूज यानी कि पुनः उपयोग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो ये सोच तेजी से दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में युवा अपने घर से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है उसे तुरंत फेंकेंगे नहीं, पहले सोचेंगे कि इसका दोबारा उपयोग कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ये एक ऐसा छोटा सा नियम है लेकिन इसकी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि फेंकने से पहले हमें चीजों के बारे में सोचना होगा तो ये बातें निरंतर बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि चीजों को फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए। गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, यही जानते हैं कि खरीदने से पहले भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोबारा उपयोग की संस्कृति केवल पुरानी चीजों को फिर से इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है श्रोताओं, इसकी शुरुआत खरीदारी से पहले भी होती है। हम देखते हैं कशिश कि किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं हम, तो खुद से पहले हमें पूछना है कि क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है, क्या मेरे पास पहले से ऐसी कोई चीज मौजूद है, क्या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसकी मरम्मत संभव है, क्या इसे बाद में किसी दूसरे काम में उपयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम किसी वस्तु को इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो नई है, आकर्षक है या बाजार में ट्रेंड कर रही है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि जो नया है वही हमारे लिए जरूरी भी हो। समझदारी सिर्फ अच्छी चीज खरीदने में नहीं श्रोताओं, बल्कि जरूरत के अनुसार चीजें खरीदने में भी है।
1: बिल्कुल, साथ ही अगर बात करें पुराने कपड़ों को नई जिंदगी देने की, तो हमारे घरों में कपड़े ऐसी चीजों में शामिल होते हैं जिन्हें थोड़ा समय बाद हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी कपड़ा छोटा हो जाता है, कभी उसका रंग पुराने लगने लगता है, तो कभी वह हमारी पसंद का नहीं रहता युवा साथियों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह कपड़ा पूरी तरह बेकार हो गया है, उसे आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं अगर वह पहनने योग्य हो। पुराने कपड़े घर में दूसरे उपयोग में भी लाए जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई की थोड़ी रचनात्मकता से उन्हें नए उपयोगी रूप में बदला जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: युवा इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी जोड़ सकते हैं। पुरानी चीज को नया रूप देना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा विचार नहीं है जागृति जी, बल्कि रचनात्मकता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई घरों में पुरानी चीजें रहती है तो हम उसका इस्तेमाल श्रोता साथियों किसी भी चीज में कर सकते हैं। जैसे कि आपने कपड़ों के बारे में बताया, क्रिएटिविटी से भी हम उन कपड़ों को जोड़ सकते हैं। वहीं अगर किताबों के बारे में बताया तो कई घरों में पुरानी किताबें अलमारी में रखी रहती है, हम देखते हैं वर्षों तक उनका इस्तेमाल नहीं होता। अगर किताबें अच्छी स्थिति में है श्रोता साथियों, तो हमारे लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई है।
1: जी हाँ।
0: तो उसे किसी दूसरे विद्यार्थी तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह मरम्मत की आदत को भी अपनाना होगा, क्योंकि आज कई बार छोटी खराबी होने पर हम वस्तुओं को बदलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों की जीवन शैली में मरम्मत की संस्कृति बहुत मजबूत थी।
1: बिल्कुल,
0: कपड़े फटते थे तो हम सिल देते थे, जूते खराब हो जाते थे तो हम ठीक करवा लेते थे, फर्नीचर की मरम्मत होती थी, घर की कई चीजों को लंबे समय तक संभाल कर इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो पुरानी वस्तुओं को हमेशा संभाल कर रखना जरूरी है, बल्कि विचार ये है कि मरम्मत संभव हो तो उसे एक विकल्प के रूप में हम जरूर जोड़ सकते हैं। आज युवाओं के लिए यही सोच एक नई तरह की जिम्मेदारी बन सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, दोस्तों कभी कभी किसी वस्तु की कीमत उसके पुराने रूप में नहीं बल्कि उसके नए उपयोग में छिपी हुई होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि पुरानी बोतल पौधे लगाने के काम आ सकती है, पुराना डिब्बा छोटी चीजें रखने के काम आ सकता है जागृति जी, वहीं जो पुराने कागज होते हैं उनका उपयोग हम ड्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। पुरानी लकड़ी से छोटी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कि रीयूज केवल बचत नहीं एक तरह की क्रिएटिव सोच भी है। युवा चाहे तो स्कूल कॉलेज या सामुदायिक स्तर पर पुरानी चीजों से नई उपयोगी चीज जैसी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इससे बच्चों और युवाओं में ये समझ विकसित होगी कि हर वस्तु का मूल्य केवल उसके बाजार भाव से तय नहीं होता।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि कल्पना कीजिए श्रोताओं कि किसी घर में ऐसी किताबें हैं जिनकी अब जरूरत ही नहीं है, और दूसरे घर में किसी बच्चे को उन्हीं किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दोनों परिवारों के बीच चीजों का आदान प्रदान हो जाए तो एक वस्तु दोबारा उपयोग में आ सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसी तरह श्रोता साथियों हम कहना चाहेंगे आपसे कि कचरा केवल हमारे घर के बाहर दिखाई देने वाली समस्या नहीं है। जब बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं कम समय में इस्तेमाल होकर फेंक दी जाती है तो उन्हें संभालने और निपटाने की जरूरत भी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अगर हम वस्तु की उपयोग अवधि बढ़ाते हैं, उन्हें साझा करते हैं, मरम्मत करते हैं या दोबारा उपयोग करते हैं, तो हम कचरे को कम करने की दिशा में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आज के कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा काम आप जरूर कीजिएगा। अपने घर में ऐसी 5 चीजें खोजिए जिन्हें आप फेंकने वाले थे। अब हर चीज को देखकर खुद से आप पूछिए कि क्या इसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है, अगर हाँ तो उसका दूसरा उपयोग खोजिए। अगर आपके काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम आ सकती है तो उसे जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए। अगर मरम्मत हो सकती है तो उसकी आप मरम्मत करवाइए, और अगर वो वास्तव में उपयोग योग्य नहीं है तो उसे उचित तरीके से अलग करके निपटाने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: यही छोटा सा अभ्यास हमारी आदतों में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथियों से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों विकास का मतलब केवल ज्यादा चीजें खरीदना नहीं होता, विकास का मतलब ये भी है कि हम उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना कैसे सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि हम पुराना मतलब बेकार वाली सोच को थोड़ा बदलें। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज को फेंकने से पहले एक बार सोचना जरूर जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि किसी वस्तु की हमारी जिंदगी में भूमिका खत्म हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग वहीं खत्म हो ये भी जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ।
1: तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई ऐसी पुरानी चीज आए और आपका मन कहे कि इसे फेंक दें, तो बस एक पल रुकेगा और खुद से पूछेगा कि क्या इसे एक और मौका दिया जा सकता है। शायद आपका यही एक सवाल किसी चीज को कचरे में जाने से रोक दे।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए युवा साथियों, कम खरीदे, लंबे समय तक इस्तेमाल करें, जरूरत हो तो साझा करें, और फेंकने से पहले दोबारा उपयोग के बारे में जरूर सोचें।
0: जी हाँ,
1: इसी छोटी सोच से बन सकती है एक जिम्मेदार जीवन शैली और एक अधिक जागरूक समाज जागृति। जी
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, श्रोता साथियों, कि आप सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाते रहिए।
1: जी हाँ।
0: इन उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर हो चुके हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होता बचपन।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बचपन केवल किताबों में लिखी बातें सीखने का नाम नहीं है। बचपन तो उस समय और भी खूबसूरत बनता है जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को देखता है, समझता है और उससे जुड़ता है। जिस गांव में बच्चा रहता है वहां की गलियां, खेत, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बाजार, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, आंगनबाड़ी, खेतों में काम करते किसान और कशिश घर के बुजुर्ग, ये सभी उसके लिए सीखने की खुली किताब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे कि अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बच्चों के विकास के लिए क्यों जरूरी है और परिवार व समुदाय इसमें बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज कार्यक्रम में ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होता बचपन को लेकर। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण दौर होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यही वह समय है जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करता है। वह जो देखता है, वह जो सुनता है और जिन लोगों के साथ वह समय बिताता है, उनसे वह बहुत कुछ चीजें सीखता है।
1: जी जी।
0: इसलिए बच्चे का बचपन केवल किताबों और स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे अपने घर, गांव, प्रकृति, समाज और आसपास की दुनिया से भी परिचित होना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, बच्चों की दुनिया उनके घर से शुरू होती है और धीरे धीरे वह अपने घर के बाहर की दुनिया को पहचानना सीखता है। वह जानता है कि उसके गांव का नाम क्या है, उसके आसपास कौन कौन से गांव हैं, खेतों में कौन सी फसलें होती हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं और लोग किस तरह अपना जीवन चलाते हैं।
0: जी जी।
1: जब माता पिता बच्चों को खेत पर ले जाकर बताते हैं कि यह गेहूं है, यह मक्का है और यह सब्जी की फसल है, यह पौधा कैसे बढ़ता है, तो बच्चा केवल नाम नहीं सीखता बल्कि अपने भोजन और प्रकृति के बीच का संबंध भी समझने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह तालाब, कुआं, नदी, छोटे जलधारा के पास जाकर बच्चों को पानी के महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। पेड़ पौधों को पहचानना, पक्षियों की आवाज सुनना, अलग अलग मौसम में प्रकृति में आने वाले बदलाव देखना, ये सभी बच्चे के लिए बहुत स्वाभाविक और रोचक सीख है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही हम देखते हैं कि गांव का वातावरण बच्चों के लिए सीखने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। जैसे कि खेत खलियान, पेड़ पौधे, तालाब, नदी, पशु पक्षी, कच्ची पक्की गलियां, स्थानीय बाजार और गांव के लोग, ये सभी बच्चों के लिए किसी खुली किताब की तरह ही होते हैं। साथियों, बच्चा जब अपने माता पिता या दादा दादी के साथ खेत में जाता है तो वह केवल घूमता नहीं है बल्कि खेती, मेहनत और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ चीजों को जानता है।
1: बिल्कुल।
0: उसे समझ आ जाता है कि हमारे भोजन में आने वाला अनाज किसान की मेहनत से ही पैदा होता है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे गाँव के बुजुर्ग अनुभव का खजाना होते हैं। उनके पास गाँव के पुराने समय की अनेक कहानियाँ, परम्पराएं और स्थानीय ज्ञान होते हैं। बच्चे जब दादा दादी या नाना नानी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पहले गांव कैसा था, लोग खेती कैसे करते थे, पुराने समय में पानी कैसे बचाया जाता था या त्योहार किस तरह मनाए जाते थे, तो उन्हें अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। बुजुर्ग बच्चों को स्थानीय लोक कथाएं, कहावतें, पहेलियां और पारंपरिक खेल भी बता सकते हैं। इससे बच्चों का अपने परिवार और समुदाय से जुड़ाव भी मजबूत हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि श्रोता साथियों, से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर यही बात करें कि बचपन का प्रकृति से जुड़ाव काफी जरूरी है। श्रोता साथियों, गांव के पारंपरिक खेल भी बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, रस्सी कूदना, पतंग उड़ाना, ये जो ऐसे खेल होते हैं अंजलि जी, वो बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ साथ उन्हें मिलजुल कर रहना भी सिखाते हैं। साथ ही वे बच्चों को हार जीत कैसे स्वीकार की जाती है ये भी सिखाते हैं। खेल के मैदान में बच्चों के बीच दोस्ती और सहयोग की भावना भी विकसित होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके घर तक भोजन कैसे पहुंचता है, किसान खेत में मेहनत करता है, पशुपालक पशुओं की देखभाल करता है, कारीगर अपनी कला से वस्तुएं बनाता है और अलग अलग काम करने वाले लोग मिलकर गांव को आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे यदि इन कामों को करीब से देखते हैं तो उनके मन में श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता है। उन्हें समझ आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर
0: हाँ।
1: काम समाज के लिए उपयोगी है। माता पिता बच्चों को गांव के अलग अलग काम करने वाले लोगों से परिचित करा सकते हैं और उनके काम के बारे में सरल भाषा में उन्हें बता भी सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बच्चों के विकास के लिए क्यों जरूरी है, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो कशिश, आज बच्चे मोबाइल और टीवी की दुनिया में काफी समय बिताते हैं। ऐसे में उन्हें अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। बच्चों के साथ सुबह या शाम थोड़ी देर गांव में घूमना, पेड़ों को पहचानना, पक्षियों को देखना, मौसम के बदलाव पर बात करना या घर में छोटा सा पौधा लगाना उनके लिए सीखने का अच्छा माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे से पूछा जा सकता है कि आज तुम्हें कौन सा पक्षी दिखाई दिया, इस पेड़ पर कौन से फल लगते हैं, बारिश के बाद खेतों में क्या बदलाव आया। ऐसे छोटे छोटे सवाल कशिश बच्चों में देखने, सोचने, सवाल पूछने की आदत विकसित करते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपने गांव से परिचित होने का अर्थ केवल वहां की जगहों को पहचानना नहीं है, बच्चों को यह समझाना भी चाहिए कि गांव को साफ और सुंदर रखना उनकी भी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: कूड़ा इधर उधर न फेंकना, पानी बर्बाद न करना, पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखना, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहना, ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती है। जब बच्चे अपने आसपास की समस्याओं को पहचानते हैं तो उनमें समाधान के बारे में सोचने की क्षमता भी विकसित हो पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो परिवार और विद्यालय में बच्चों की राय को महत्व देना भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे अपनी बात खुलकर रखते हैं, छोटे छोटे निर्णयों में भाग लेते हैं तो उनमें आत्मविश्वास के साथ साथ जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि किसान, सफाई कर्मी, अन्य जो कामगार समाज के लोग होते हैं वो गांव के विकास में अहम योगदान देते हैं।
0: जी जी,
1: किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये भावना अंजलि जी बचपन से ही बच्चों में आनी चाहिए। गांव में बच्चों को ये भी सीख मिलनी चाहिए कि खेल, शिक्षा, घूमने फिरने और नई चीजें सीखने के अवसर लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से मिले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे समानता और आपसी सम्मान की भावना भी मजबूत होती है अंजलि जी।
0: जी हाँ कशिश, जब बच्चा अपने गांव, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोगों और अपनी प्रकृति को जानता है तो उसके भीतर अपनेपन की भावना विकसित होती है। उसे महसूस होता है कि वह केवल एक परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े समुदाय का भी हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: यही भावना आगे चलकर उसे दूसरों के प्रति सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी का भाव सिखाती है। बच्चे को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ना उसके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को भी मजबूत करता है। इसलिए श्रोता साथियों, बचपन में जो चीजें बच्चे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, वे उनके मन में लंबे समय तक बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को हर समय केवल यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या सीखना है, कभी कभी उसे अपने आसपास की दुनिया देखने, सवाल करने और खुद समझने का अवसर देना भी जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: हमारा गांव

0: बच्चों के लिए केवल रहने की जगह नहीं है कशिश, यहाँ खेत है जो मेहनत की कहानी बताते हैं, पेड़ है जो प्रकृति का महत्व समझाते हैं, तालाब और कुएं पानी की कीमत बताते हैं, बुजुर्ग अनुभव से परिचित कराते हैं और अलग अलग काम करने वाले लोग मेहनत और सहयोग का अर्थ समझाते हैं। इसलिए हम बच्चों को अपने गाँव से जोड़े, उनके साथ थोड़ी देर खेत तक जाएं, किसी बुजुर्ग से बातचीत करवाएं, पेड़ पौधों की पहचान करवाएं, स्थानीय खेल खिलाएं, उन्हें अपने आसपास की चीजों पर सवाल पूछने दें, क्योंकि जो बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझता है वह धीरे धीरे अपने समाज को समझना भी सीखता है, और यही समझ उसके बचपन को केवल यादों से नहीं बल्कि अनुभव और सीख से भी समृद्ध बनाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि श्रोता साथियों, अपने गांव और आसपास की दुनिया से परिचित होना बचपन का वास्तव में सीखने और समझने की एक सुंदर यात्रा है।
0: बिल्कुल,
1: गांव बच्चों को न सिर्फ प्रकृति, मेहनत, संस्कृति, रिश्तों और सामुदायिक जीवन का पाठ पढ़ाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है अंजलि जी कि हम बच्चों को समय दें, उनकी जिज्ञासाओं को समझे और उन्हें वास्तविक दुनिया से जुड़ने के अवसर प्रदान करें।
0: बिल्कुल,
1: आइए श्रोता साथियों, हम सभी मिलकर हमारे बच्चों को ऐसा सच्चा बचपन दे जिसमें किताबों के साथ खेती की सीख भी हो,
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल की दुनिया के साथ मिट्टी की खुशबू भी हो और आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव भी हो, और यही बचपन आगे चलकर अंजलि जी एक मजबूत, संवेदनशील और जागरूक समाज की नींव बनेगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखा है, तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, ना जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तो है। जे जंगल में हौजे हैं ई उन्हें रक्षा करे हैं। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास की असली पहचान है।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: માઇન્ડબોનું ગીત તો આ શું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું સ્વાગત કરું હું અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે માઇન્ડબોનું ગીત કે પહેલાં આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે આપણે વાંગણ મેં બીજના આદાન પ્રદાન એ સંરક્ષણની જે પરંપરા હે એનું શું મહત્વ હે એને લઈને આજે આપણે વાત કરંગા. તો આ વિષયમાં તે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ થકી વિશે વિશેષજ્ઞ મંગીલાલજી જોડી રહી. તો સબથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ બીજ કા આદાન પ્રદાન. ગાંવ મેં બીજ બચાને ઓર બાંટને કી જો મજબૂત પરંપરા હૈ ઉસકા ક્યા મહત્વ હૈ. તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે જો કિસાન હૈ વો આપસ મેં બીજ કા આદાન પ્રદાન ક્યો કરતે હૈ और इसका खेती में क्या महत्व है.
1: जी तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की. तो बीज है हमारी खेती का आधार है.
0: बिल्कुल.
1: और जितना बीज आपका अच्छा होगा और आपकी जलवायु के अनुकूल होगा उतनी अच्छी आपकी फसल होगी.
0: बिल्कुल.
1: तो देखिए इसका महत्व तो इसलिए है कि जैसे बाजार से हम बीज लाते हैं तो बाजार का बीज की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि वो बीज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कैसा होगा, कब उसकी पैकिंग हुई होगी, वो पैदावार वो उगेगा या नहीं उगेगा वो भी गारंटी नहीं होती.
0: बिल्कुल.
1: इसी के हम विपरीत देखते हैं जैसे बीज बचाने की हम एक दूसरे का आदान प्रदान की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ये है कि हमारा बीज खुद का होता है. तो खुद का बीज होता है तो हमारी आंखों के सामने वो पैदा हुआ है.
0: बिल्कुल.
1: उसको हमने पैदा होते हुए उस पौधे की ग्रोथ जो है उसके बढ़वार है वो हमने देखी है और उस पौधे का जो भी बीज हम ले रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता हमें पता है. तो हमारा विश्वास ये होता है कि जो बीज मेरे पास है वो ज्यादा बेहतर है.
0: बिल्कुल.
1: और वो विश्वास सदियों से हमारे समुदाय में चले आ रहा है और अभी भी जो है कहीं भाई बहन है किसान है हमारे वो आदान प्रदान करते हैं, बीज बचाते भी हैं.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन एक चीज इसमें अभी कुछ सालों से ऐसी आई है कि जिसके घर में बीज है भी तो भी वो बाजार से ले आता है.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन ये बहुत जो है आपको लगता है कि आसान है लेकिन ये आपकी जेब पे कितना भारी पड़ता है वो आप कभी इसका आकलन कीजिएगा.
0: बिल्कुल सर. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वागड़ क्षेत्र में किसान की जो पारंपरिक रूप से एक दूसरे को बीज आदान प्रदान करने की जो परंपरा है उसका खेती में क्या महत्व है और किस लिए वो उसमें खास है. यही बात करें कि वागड़ में मक्का उड़द तुअर ज्वार जैसी जो स्थानीय फसलें हैं उनके बीज को किसान जो है वो अगले मौसम के लिए कैसे सुरक्षित रख सकता है.

0: देखिए हम लोग क्या है कि हम कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो समुदाय के पास में 8-10 बीज है वो रखते हैं अपने, जो कि वो लगातार अपने खेतों में करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो करते हैं वो बात ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से बचा के रखें या उसको किस तरह से आप उसको रखेंगे। तो देखिए जब हम अगली फसल के लिए बीज की तैयारी करते हैं तो हमारे ध्यान में एक जो है एक चीज हमेशा रहती है कि अच्छा बीज है उसको मुझे रखना है।
1: बिल्कुल
0: तो हमें क्या करना है कि जैसे अभी मक्के का जो सीजन है हमारे यहाँ, तो अभी आपको क्या करना है अपने खेत में, जैसे आप घूमा आपने अवलोकन किया तो अच्छे जो भुट्टे हैं उन पे आपकी नजर ऑटोमेटिक जाएगी
1: बिल्कुल
0: कि बहुत अच्छा है, और जो थोड़ा कमजोर है वो पता लग जाएगी कमजोर है। तो हमें उनकी टेकिंग कर देनी चाहिए अभी। जैसे आपको 10 किलो मक्का चाहिए तो आप उसमें से 50-100 पौधे ऐसे जिनके आप कुछ बांध सकते हैं, जैसे उसको धागा बांध दिया या उसको कोई ऐसा पीला या लाल कुछ ऐसा कलर का कुछ बांध दिया आपने कपड़ा, तो उस तरह से आप उसको बांध सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये पौधे मुझे बीज के लिए रखने। तो ये है, तो हमें क्या है कि उन पौधों का चयन करना चाहिए पहले बहुत सोच समझ के, और फिर उतना ही जरूरी है पौधों को काटने के बाद जो है उसको अच्छे से उनको सूखने दे। अब सूखने के बाद में क्या है कि जब उसकी नमी है वो पूरी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद में उसको निकाल कर आप जो है उसको क्या करते हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, राख है, उसके साथ मिलाकर आप रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पे एक चीज और है कि जब आप भरते हैं, जब मान लो मिट्टी में आप जैसे उड़द है, तुअर है या मक्का है, आप कोई भी बीज जब आप मिट्टी के बर्तन में भर के रखते हैं तो एक चीज ये भी रही कि जो बर्तन है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे उसको नमी बना देता है। तो उसके लिए मैं एक तरीका जो है बताऊंगा आपको कि उसके लिए आप क्या करें कि पहले जो घड़ा है उसमें बीज भर दिया राख के साथ और नीम के पत्ते, जो परंपरागत तरीके हैं हमारे जो हम सदियों से करते हैं वो किया आपने, उसके बाद में उसको थोड़ा खाली छोड़ दे, और उसमें क्या होता है कि एक दिया, जो दिया होता ना बना दीपक, वो दीपक में तेल डाल के उसमें एक बत्ती जला के उस घड़े में रख दो आप।
1: बिल्कुल।
0: और फिर उसको पैक कर दो, तो उसमें क्या होगा कि वो जो बीज है उसमें जितनी ऑक्सीजन होगी तब तक तो वो दिया की बत्ती जलेगी, तो वो पूरा ऑक्सीजन वो ले लेगा।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे वो अगर वो बंद हो गया तो इसका मतलब उसके ऑक्सीजन अंदर खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो परंपरागत तरीके उनको अपना सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि हम जो है चयन करने के बाद में उसको अच्छे से सुखाएं, उसका उपचार करके, और फिर आप उसमें भर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि एक किसान दूसरे किसान से जब बीज लेता है तो उस समय उसको अच्छी गुणवत्ता की पहचान में किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
0: देखिए हम क्या है कि बीज जब लेते हैं एक दूसरे से तो हम गांव में ही ऐसा करते हैं, हो सकता है दूसरे गांव से भी आप ले, लेकिन आपको बीज जो है उसको आप देख ले, तो सबसे पहले तो वो बीज कोई भी हो, चाहे वो गेहूं मक्का हो, एक तो उसका दाना कमजोर नहीं होना चाहिए, खिला हुआ दाना होना चाहिए, दूसरा उसका रंग है वो पूरा उस तरह से होना, जैसे पीली मक्का है या सफेद मक्का है, तो उसको क्या है कि उसको देख ले आप कि दाना भरा हुआ है, दाने में कोई जैसे बोलते गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे तो नहीं है, उसका जो अंकुरित होने की जगह है वो एकदम सुरक्षित है, टूटा हुआ तो नहीं है, तो इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जैसे गेहूं है तो जैसे टुकड़ी है, टुकड़ी आपको किसी से लेना है तो आप उसको देख ले हाथ में लेके कि दाना है वो बिल्कुल कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर दाना आपको उगेगा नहीं, तो हमें उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए। दूसरा इसका दूसरा ये कि जिससे हम ले रहे हैं उससे हम उनकी थोड़ी सी उनसे जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कि आप बताइए आपने किस तरह से इसको रखा है, पिछले साल इस बीज से आपके एक बीघा में कितनी पैदावार हुई, तो आपको डिफरेंट लगेगा, किसी के एक बीघा में 2 ही क्विंटल हुआ होगा, और अच्छा बीज उसने लगाया अगर खुद का घर का और उसको 4 क्विंटल हुआ, तो इसके मतलब गुणवत्ता अच्छी है। तो उस तरह से आप जो है बात संवाद के माध्यम से भी ये चीजें देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो यही सर बीज का आदान प्रदान जब किसान भाई बहन आपस में करते हैं तो इसके क्या व्यवहारिक लाभ उन्हें मिलते हैं?
0: देखिए आदान प्रदान करना बहुत अच्छी परंपरा है और ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी रही है कई सालों से। इससे क्या होता है कि सबसे सीधा लाभ तो ये है कि अगर मान लो आपको बारिश हो गई, उदाहरण के तौर पर बारिश होने के बाद में क्या है कि बहुत लोग जो बाजार की तरफ दौड़ते हैं, तो एक तो आपके पास बीज है, आप एक दूसरे से ले रहे हो गांव के गांव में, तो आपको बाजार का खर्चा है वो नहीं आएगा आने जाने का। दूसरा जो बाजार का बीज होता है वो बहुत महंगा होता है, जबकि उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। जब भी हम आदान प्रदान करते हैं तो एक दूसरे का विश्वास होता है और वो विश्वास हम आपस में भी पैदा होता है, और इससे क्या होता है कि व्यवहारिक लाभ की बात करूं तो आपके रिश्ते हैं ना वो अच्छे रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जबकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो क्या है कि रिश्ते भी आपके उसी तरह से हो जाते हैं। तो एक तो रिश्ते बनाने का काम कर रहा है, दूसरा आपके आर्थिक बचत,
1: बिल्कुल।
0: तो आप महंगा बीज खरीदने के बजाय अपना खुद का जलवायु के अनुकूल बीज है, अपना खुद का परंपरागत जिसको हम उपयोग कर रहे हैं वो ही मिल जाता है आपकी, तो उसमें ज्यादा चांस रहता है और अच्छी पैदावार की गारंटी होगी।
1: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि स्थानीय बीज को बचाने और गांव में उनके आदान प्रदान की जो परंपरा है वो आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किसान भाई बहनों को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसका आसान से तरीका है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक बच्चे को अपने माता पिता से संस्कार मिलते हैं, उसी तरह जो हमारे गाँव में जो बुजुर्ग है, जो महिला पुरुष है, जो पहले से कई सालों से खेती कर रहे हैं, तो मैं सभी किसानों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं चौपाल पे बैठे हो या कोई बैठक है तो आप युवाओं को और बच्चों को जरूर शामिल करें और उस ज्ञान को आप उनको दें। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप जो है उन बीजों को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर आप अपने घर में बच्चों के और युवाओं के सामने उसकी बातचीत करें, तो ये जो ज्ञान है आपकी बातचीत से ही जो है आगे बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: किसी को यह सिखाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेने की, आप उनके साथ संवाद करें, उसका क्यों महत्वपूर्ण है, वो कैसे उसको रखा जाता है, एक दूसरे को देते हैं तो क्यों देते हैं, उसका महत्व उनको समझाए, उससे क्या होगा, तो वो सारी चीजें पे संवाद होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि किस तरीके से वागड़ में बीज का आदान प्रदान करने की जो परंपरा है उसका क्या महत्व है और किस तरीके से ये खेती से जुड़े लाभ हमारे किसान भाई बहनों को पहुंचाती है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बीज को अच्छे से आप बचा कर रखें, आपका खुद का बीज, ताकि हमारी फसल की अच्छी पैदावार की गारंटी हो। दूसरा, ये जो संस्कार और ये जो संस्कृति है इसको आप युवा और बच्चों के साथ साझा करें।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: ભાઈ બનો જેમ કે આપણે આપણા વેસમાં વિષય વિશેષજ્ઞ જોડાતા હતા અને એણે આપણને બતાડ્યું કે આ જે બીજને આદાન પ્રદાન કરવાની જે ચીજે હે એનું ખેતી તકી હું સંબંધ હે ને એને સાથે આપણે જે સ્થાનીય બીજ હે એને બીજી ફસલ બલ્લે હેતે સુરક્ષિત રાખી શકો, બીજ સહી વખત આપણે બીજા મનક તકી લઈ રહો તહી વખત આપણને કઈ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું હે ને એની સાથે આ જે પરંપરા હે એનું આપણને હું લાભ મળે હે ને આવા વારી પીઢી ઉદી આપણે આ વાતે હરતે પુગાડી શક, આ હંગરી વાતે એણે આપણને બતાડી, આશા કરા હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે હવે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પણ સાથે પહેલા હમરી લઈ કોર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

नाइनबोनो अणस की थाते कार्यक्रम खेती बाड़ी तक की पड़ा सूटा। आशा कर हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक की जो भी बातें रही हैं ये आपने गमी होगा। तो आपने हमारो आसुआ कार्यक्रम केवल लगे इन्हें बारे में आप राय सुझाव अमने आली शको अमरे अण पता मत है अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमर अण फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय निहाते तारुदी राम राम राम राम।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन आते नाम हिरते आवे, कागज केने कने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थी जाए।
2: तो हमरो बोलो, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथों मुंह में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरो अपनावी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पशु पक्षियों की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, हम देखते हैं कि प्रकृति केवल पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ों का नाम नहीं है। प्रकृति में दिखाई देने वाला हर जीव, चाहे वो जंगल में रहने वाला बड़ा पशु हो, खेतों में घूमने वाली चिड़िया हो या हमारे आसपास दिखाई देने वाला छोटा सा कीट, प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह जब किसी गाँव में पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है श्रोताओं, खेतों में गाय बैल दिखाई देते हैं, पेड़ों पर गिलहरियां दौड़ती है और आसमान में पक्षियों के झुंड उड़ते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारा पर्यावरण जीवंत है। लेकिन जब जंगल कम होते हैं, जल स्रोत सूखते हैं, पेड़ों की संख्या घटती है और प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका असर केवल इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इसलिए आज का हम कार्यक्रम में बातचीत करने वाले है कि पशु पक्षी की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा का क्या महत्व है और इसे हमें अपनी जिम्मेदारी कैसे समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं पशु पक्षियों की रक्षा, प्रकृति की सुरक्षा को लेकर, तो हमने आपको बताया था साथियों कि पेड़ों की संख्या घटती है और प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका असर केवल इंसानों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों के जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए अंजलि, पशु पक्षियों की रक्षा करना वास्तव में प्रकृति की रक्षा करना है और प्रकृति की रक्षा करना हमारे भविष्य की सुरक्षा करना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि प्रकृति में हर जीव की अपनी अलग भूमिका होती है।
0: बिल्कुल,
1: पक्षी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। कई पक्षी और कीट फसलों में परागण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। कुछ जीव ऐसे कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव में पशुओं का महत्व तो सदियों से रहा है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ और पशु ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। पशुधन किसानों की आजीविका का आधार बन सकता है, इसलिए पशु संरक्षण केवल दया का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संतुलन से भी जुड़ा विषय है।
0: जी अंजलि, क्योंकि वन्य जीवों का सबसे बड़ा घर जंगल है। जंगल भोजन, पानी और सुरक्षित रहने की जगह देते हैं। जब जंगलों का क्षेत्र कम होता है श्रोताओं, या प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, तो वन्य जीव के सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जंगल बचेंगे तो वन्य जीव बचेंगे, और वन्य जीव बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन मजबूत होगा। हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं कि जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है। जंगल वर्षा चक्र, मिट्टी, जल स्रोत और जैव विविधता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी कि पक्षियों के लिए हमारा छोटा सा प्रयास क्या हो सकता है। तो श्रोता साथियों, गर्मियों में पक्षियों के लिए छत या आंगन में पानी का पात्र रखना एक छोटा लेकिन सबसे उपयोगी प्रयास हो सकता है। आसपास के ऐसे पेड़ पौधे लगाना जिनसे पक्षियों को आश्रय और भोजन मिल सके, उनके लिए मददगार हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, पानी का पात्र रखते समय उसकी नियमित सफाई भी जरूरी है। स्वच्छ पानी और सुरक्षित स्थान पक्षियों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। गांव में हम देखते हैं जागृति जी कि पुराने जो पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें तो उसके लिए अनेक छोटे पक्षियों और जीवों को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बिना आवश्यकता पेड़ों की कटाई रोकना भी पशु पक्षी संरक्षण का हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किसान और प्रकृति का संबंध भी बहुत गहरा है, ये हम जानते हैं। खेत में केवल फसल नहीं होती बल्कि वहाँ अनेक जीवों का संसार भी होता है। मिट्टी में रहने वाले जीव, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, पक्षी और अन्य छोटे जीव कृषि पारिस्थितिक का हिस्सा होते हैं। कृषि में प्रकृति के अनुकूल तरीके को बढ़ावा देने से मिट्टी, पानी और जैव विविधता की रक्षा में सहायता मिल सकती है। खेत के आसपास पेड़ पौधों और प्राकृतिक स्थानों को बचाकर रखना भी उपयोगी है। हम देखते हैं कि किसान भाई बहनों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो खेती भी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है।
1: जी हाँ, यही बात करें तो श्रोता साथियों, पशु हमारी भाषा नहीं बोल सकते लेकिन उनकी भी आवश्यकताएं और संवेदनाएं होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: पालतू पशुओं को पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी, सुरक्षित रहने की जगह और आवश्यक देखभाल मिलना चाहिए। सड़क पर घूमने वाले पशुओं के प्रति भी संवेदनशीलता जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: वाहन चलाते समय सावधानी रखना, पशुओं को परेशान न करना और जागृति जी, घायल पशु दिखाई दे तो स्थानीय पशु चिकित्सा और संबंधित सहायता तक सूचना पहुँचाना हमारी जिम्मेदार व्यवहार है।
0: बिल्कुल,
1: पशुओं के साथ हिंसक या क्रूर व्यवहार न करना समाज की मानवीय संवेदनशीलता को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ वन्य जीवों का संरक्षण करने का अर्थ यह भी है कि हम उनके प्राकृतिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। श्रोताओं, जंगल में वन्य जीव दिखाई देने पर उनके करीब जाने, उन्हें छेड़ने, उन्हें भोजन देने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने देना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित व्यवस्था है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और युवाओं को भी प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति सही जानकारी देना जरूरी है ताकि वे रोमांच या मनोरंजन के लिए किसी वन्य जीव को परेशान न करें।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही है।
0: बिल्कुल,
1: कि पशु पक्षियों की रक्षा करना किस तरीके से हमारी जिम्मेदारी है और ये किस तरीके से हमारी प्रकृति की सुरक्षा भी है। तो आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि वन्य जीवों से दूरी और सुरक्षा का हमें ध्यान कैसे रखना है, यहीं बात करें प्लास्टिक और कचरे से खतरे की, तो श्रोता साथियों, हमारे द्वारा फेंका गया कचरा केवल गंदगी नहीं फैलाता बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी खतरा बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: खुले में पड़ा प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री और अन्य कचरा पशुओं के संपर्क में आ सकता है। इसलिए जागृति जी, घर, खेत, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा इधर उधर न फेंकना हमारे लिए जरूरी है। कचरे को अलग अलग करके उचित स्थान पर डालना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ गांव केवल इंसान के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी सुरक्षित गांव होता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जल स्रोतों का महत्व केवल मनुष्य के लिए नहीं है। तालाब, नदियाँ, कुएं और छोटे प्राकृतिक जल स्रोत अनेक जीवों के जीवन का आधार होते हैं। अगर गांव के तालाब और जल स्रोत स्वच्छ रहे, उनमें कचरा न डाला जाए और उनके आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र सुरक्षित रहे, तो बहुत सारे पशु पक्षियों को लाभ मिल सकता है। जल संरक्षण इसीलिए भी जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि पानी की कमी का सीधा असर जीव जगत पर पड़ता है। प्रकृति संरक्षण की आदत बचपन से विकसित की जा सकती है। स्कूलों में पक्षियों के लिए दाना

0: निगरानी रखने, पौधारोपण करने, स्थानीय पशु पक्षियों की जानकारी जुटाने और स्वच्छता अभियान जैसे छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। युवा अपने गांवों में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सोशल मीडिया और सामुदायिक माध्यमों के जरिए पशु पक्षी संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम कह सकते हैं अंजलि कि युवा केवल भविष्य की ताकत नहीं है बल्कि वर्तमान में प्रकृति के प्रहरी भी बन सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि प्रकृति की रक्षा अकेले किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। जब पूरा समुदाय मिलकर काम करता है तो परिणाम अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, गांव में सामुदायिक स्तर पर हम कुछ संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटेंगे, जल स्रोतों में कचरा नहीं डालेंगे, पशु पक्षियों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे, गर्मियों में पक्षियों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, घायल पशु पक्षी मिलने पर उचित सहायता की सूचना देंगे, जंगल और प्राकृतिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचेंगे और बच्चों को प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाएंगे।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यही सामुदायिक जिम्मेदारी सच्चे स्वराज की भावनाओं को मजबूत कर सकती है, जहाँ गाँव अपने प्राकृतिक संसाधनों और अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी स्वयं समझता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज हम जो प्रकृति देखते हैं वो हमें आने वाली पीढ़ियों से मिली हुई संपत्ति नहीं बल्कि उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे, जंगल और जल स्रोत नष्ट करेंगे, जीव जंतुओं के आवास खत्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए श्रोताओं, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। गाँव का विकास हो, सड़कें और सुविधाएं बढ़े, कृषि आगे बढ़े, लेकिन साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा भी होती रहे।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि पशु पक्षी प्रकृति से अलग नहीं है और हम मनुष्य भी प्रकृति से अलग नहीं है। हम सभी एक ही प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। जब किसी पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, खेत में तितली मंडराती है, तालाब में जीव जंतु पानी पीते हैं और गांव की गलियों में पशु सुरक्षित रहते हैं, तब प्रकृति जीवंत दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आइए हम सभी केवल पशु पक्षियों के प्रति दया नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव रखें, अपने आसपास की पेड़ बचाएं, जल स्रोत बचाएं, स्वच्छता रखें और जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करें, क्योंकि पशु पक्षी बचेंगे तो प्रकृति मुस्कुराएगी, प्रकृति बचेगी जागृति जी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी।
0: बिल्कुल अंजलि, आज की इस चर्चा से बस इतना याद रखिए श्रोता साथियों कि पशु पक्षी हमारे आसपास रहने वाले जीव मात्र नहीं बल्कि प्रकृति के ऐसे साथी हैं जिनके बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम सब एक छोटा सा प्रण ले, अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचाए, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, पशु पक्षियों के लिए पानी और सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था करें और किसी भी जीव को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि जब हम किसी प्यासे पक्षी के लिए पानी रखते हैं, किसी पशु के प्रति संवेदना दिखाते हैं या एक पेड़ को बचाते हैं, तब हम केवल एक जीव की मदद नहीं करते बल्कि प्रकृति की कड़ी को मजबूत करते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्टर कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीनाती नाम हिरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मिलने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जयवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
1: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित भाई ने बहनों आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छांव में आपड़े रहो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जैसे हवा में आपड़े हाल रहो ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगा दूंगा पानी में बचा दूंगा मैं आपड़ी धरती में जीवन दान लूंगा होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे आज नाना कदम है ई अबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी पढ़ाई का तरीका बदलता है, कभी काम करने का तरीका, कभी हमारी जिम्मेदारियां और कभी हमारे सपने भी नई दिशा मांगते हैं।

ऐसे में मन में डर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम सोचते हैं कि अगर बदलाव के बाद सब कुछ गलत हो गया तो, लेकिन श्रोता साथियों जरा सोचिए कि अगर हम सिर्फ डर की वजह से वहीं खड़े रह जाएं, तो क्या हम अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बदलाव को स्वीकार करना ही होता है। तो आज सपनों की उड़ान में हम बात करेंगे कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव से भागते रहना हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। बातें ढेर सारी कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों आपसे रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव से भागना हमारे लिए क्यों नुकसानदेह हो सकता है। यही सबसे पहली बात आती है कि बदलाव से डरना क्यों स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें उसके परिणाम का पता नहीं होता। यही अनिश्चितता हमारे मन में डर पैदा करती है। नई चीजों को लेकर असफल होने का डर होता है। पुरानी आदतों और परिचित माहौल को छोड़ना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है और कई बार दूसरों की बातों और आलोचना का डर भी हमें रोकता है। पहले की असफलता के कारण भी कई बार श्रोता साथियों हम दोबारा कोशिश करने से डर सकते हैं। इसलिए डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण हमेशा पीछे हट जाना हमारे विकास में रुकावट बन सकता है। यही बात आती है कि बदलाव से भागने पर हम हमारे जीवन में क्या खो सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि बदलाव से बचना आसान रास्ता है, लेकिन इसका असर लंबे समय में दिखाई देता है। जैसे कि नई चीज सीखने का अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, पुरानी समस्या उसी तरह हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो सकता है, हम अपनी क्षमता को पहचानने का मौका खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई युवा नई तकनीक सीखने से सिर्फ इसलिए बचता है क्योंकि उसे लगता है कि यह मुश्किल है। कुछ समय बाद वही तकनीक उसके काम और रोजगार के लिए जरूरी हो सकती है। ऐसे में बदलाव से बचना उसके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अगर वो बदलाव को समय रहते स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई भी समस्या नहीं होती है। यही अब कहना चाहेंगे कि बदलाव का मतलब श्रोता साथियों एक दिन में हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है ऐसा नहीं है। बदलाव में हम अपनी दिनचर्या में एक अच्छी आदत जोड़ सकते हैं, नई जानकारी नई कला सीखने का बदलाव कर सकते हैं, अपनी गलत आदत को पहचान कर उसमें सुधार करने का बदलाव कर सकते हैं, किसी नए अवसर को आजमाने की हिम्मत करना भी बदलाव की शुरुआत है। इसलिए श्रोता साथियों, बदलाव को हमेशा बड़ी और कठिन चीज समझने के बजाय छोटे कदम से शुरुआत की जा सकती है। जैसे कि हमारी कोई ऐसी आदत है जो बहुत खराब है और अक्सर घर के सभी सदस्य हमें उसके लिए हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। लेकिन जब हमें महसूस होता है कि वाकई में इन सारी चीजों से मेरे साथ साथ मेरे घर परिवार और अन्य सदस्यों को भी परेशानी हो रही है, तो हमें उसकी शुरुआत धीरे धीरे करनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी ऐसी आदत है जो अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि हमें उसमें बदलाव करना है, तो उसकी शुरुआत एक दिन दो दिन कुछ मिनट करने से और धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से ही हम उसको बदल सकते हैं। बदलाव से हमें डरने की जरूरत नहीं है, बदलाव को स्वीकार करके अपने जीवन को उस रूप में देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे जीवन की आने वाली जो चुनौतियां हैं ना तो हम उनका सामना कर पाएंगे और कभी भी हम हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे जीवन को हम अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा और बदलाव को स्वीकार करते हुए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाकर हम हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि आज बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है कि बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस बदलाव से भागना हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। तो बातें इसी तरह आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि किस तरीके से बदलाव का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं होता है, कि हम एक दिन में हमारी जिंदगी बदल दें। बदलाव को समझें कि जो बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में आगे चलकर किस तरीके से हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा और कैसे हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। यही बात आती है कि डर को समझना

रफ्तार बदल रही है। पढ़ाई, रोजगार, खेती, तकनीक और काम करने के तरीकों में नए बदलाव आते रहते हैं। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो नए अवसरों को समझना आसान होगा। किसी युवा के लिए नई तकनीक सीखना रोजगार का रास्ता खोल सकता है। किसी किसान के लिए खेती की नई जानकारी उत्पादन को बेहतर करने में मदद कर सकती है। इसी तरह कोई महिला नई कला या कौशल सीखकर अपने लिए आय का नया रास्ता बना सकती है। इसलिए बदलाव सिर्फ चुनौती नहीं है, यह सीखने और आगे बढ़ने का अवसर भी हो सकती है। यही अब बात आती है कि बदलाव को स्वीकार करने की शुरुआत हम खुद से कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों, हमें खुद के बदलने का इंतजार करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद से क्या बदलाव कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं, उसके लिए रोज थोड़ा समय निकालें। किसी नई चीज को समझने से पहले उसकी मुश्किलें जो हैं, उसको देखकर उसे छोड़े नहीं, बल्कि उस मुश्किलों का हल क्या हो सकता है, ये हमें देखने की जरूरत है। और जरूरत पड़ने पर हम हमारे परिवार, मित्र और किसी जानकार की मदद भी ले सकते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। याद रखिए कि बदलाव एक दिन में पूरा नहीं होता, यह लगातार सीखने और कोशिश करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए बदलाव से भागने के बजाय उसे समझना और छोटे कदमों से आगे बढ़ना ही हमें नई संभावनाओं तक ले जा सकता है। इसी के साथ कहना चाहूंगी कि बदलाव हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हम चाहें या न चाहें, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसे में हमारे सामने श्रोता साथियों दो रास्ते होते हैं। या तो हम बदलाव को समझकर उसके अनुसार खुद को तैयार करें, या फिर डर के कारण उससे दूर होते रहें। जी हाँ, बदलाव को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हर नई चीज को बिना सोचे अपना लिया जाए। इसका अर्थ है कि हर नई परिस्थितियों को समझने, उससे सही जानकारी लें और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करें। अगर किसी बदलाव से डर लग रहा है तो खुद को समय दें, सवाल पूछें, जानकारी जुटाएं और छोटी शुरुआत करें। क्योंकि कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम नहीं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि किस तरीके से बदलाव होने पर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उस बदलाव से दूर भागते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

इसकी ट्रांसलेशन कर दूं। उनके जमाले रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाले रुख रोशन चेहरा, उनके जमाले रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।